वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

0: 92.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोष शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला
1: 91.2 MHz पर। ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कहने श्रोताओं, मैं या तो हाँ भी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हुई हूँ कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक। श्रोताओं कर देना अज दे कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे दे गीते कहने। बहुत सारी इं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

ये तो हमारा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कनेशोदा तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका गन्ने तो हाँ सारे इन्हीं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गणेश होता तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका गन्ने तो हाँ सारे इन्हें बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

हाँ बोला कहते हैं ना रेडियो गुंजन धर्मशाला ते गणेश होता हो तो हाँ सारे ही इस वक्त कार्यक्रम सुना देना माटी थी महक जी श्रोता होता बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन देना कार्यक्रम दा प्यारा दिया

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्यघर.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: फंक्शन कौन रखता है? ऊपर से तुम्हारी साइड से इतने सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, आधे तो ऐसे हैं जिनमें पहली बार मिलने वाली हूँ। मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन सब से कैसे डील करूँ। लो, ऊपर से ये फाउंडेशन खत्म हो गया, अब मैं अपने मुंह पे क्या लगा के जाऊँ?
7: ताला।
6: क्या?
7: अरे ताला भी खराब हो गया है। एक काम करते हैं, मार्केट चलते हैं, तुम्हारा मेकअप भी ले लेते हैं और नया ताला भी खरीद लेते हैं।
6: हाँ ठीक है, चलो मार्केट चलते हैं।
7: चलो।

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

दोस्तों, आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।
1: से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना।

नमस्कार, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन प्रदर्शिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। अब ईरान ने कहा युद्ध खत्म होने के करीब, होर्मुज व पुनर्निर्माण पर बातचीत का हो। वायुसेना का मालवाहक विमान जोरहाट में दुर्घटनाग्रस्त, 5 वायुसेना कर्मी शहीद। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को तुरंत पकड़ लेंगे AI कैमरे। 76 OTA लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 के, 50 व रेडियोग्राफर के 36 पद भरे। नादौन से धर्मशाला गैस पुल पर यातायात शुरू। अब समाचार विस्तार से। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमेरिका साथ शत्रुता समाप्त करने संबंधी समझौता अंतिम चरण में पहुंच गया। प्रस्तावित समझौते में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य को है फिर से खोलने, ईरान की जब्त विदेशी परिसंपत्तियों को मुक्त करने तथा युद्ध के बाद पुनर्निर्माण में सहायता संबंधी प्रावधान शामिल हो सकते हैं। वायुसेना का एक मालवाहक विमान AN-32 शनिवार को असम के जोरहाट वायुसेना स्टेशन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार 5 वायुसेना कर्मी शहीद हो गए। हादसे में शहीद कर्मियों में 2 अग्निवीर भी शामिल हैं। अब AI आधारित कैमरे ड्राइविंग स्टाइल से बता देंगे कि वाहन चालक नशे में है या नहीं। हिमाचल प्रदेश में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने 75 प्रमुख स्थानों पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित इस व्यवस्था के तहत लगे स्मार्ट कैमरे 24 घंटे सड़कों पर नजर रख रहे हैं। इसके चलते यातायात नियम तोड़ने वालों की पहचान तेजी से हो रही है और चालान अपने आप दर्ज किए जा रहे हैं। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों में जल्द ही पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दूर होने जा रही है। राज्य सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद ऑपरेशन थिएटर लैब और असिस्टेंट टेक्नीशियन ग्रेड 2 रेडियोग्राफर के कुल 162 पद भरने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग इन भर्तियों से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने में जुट गया है। लंबे समय से क्षेत्र की जनता जिस पुल का इंतजार कर रही थी वो अब पूरा हो गया। नादौन से धर्मशाला मार्ग पर ब्यास नदी पर निर्मित नया पुल बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इस पर वाहनों की आवाजाही भी शुरू कर दी गई है। पुल के शुरू होने से नादौन शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को काफी हद तक कम होने की उम्मीद जगी है। हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम पर्यटन क्षेत्र में नई पहचान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। बाजार की प्रतिस्पर्धा में मजबूती से उतरने और निजी होटल चेन को चुनौती देने के लिए निगम इस माह के अंत तक प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर प्रिविलेज कार्ड लॉन्च करेगा। निगम का दावा है कि ये योजना पर्यटकों को विशेष सुविधाओं के साथ VIP अनुभव प्रदान करेगी और साथ ही निगम की आय बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगी। भारत अब 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से आने वाले की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने और उसे नष्ट करने की क्षमता वाला देश बन गया है। DRDO ने स्वदेशी तकनीक पर आधारित बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली का सफल परीक्षण कर रक्षा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। संगठन ने 10 और 11 जून को इस प्रणाली के लगातार 3 सफल फ्लाइट टेस्ट किए। राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की स्कूल छुट्टी के बाद जनगणना कार्यों में ड्यूटी लगाने का विरोध तेज हो गया है। शिमला में शनिवार को राजकीय अध्यापक संघ के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ बैठक में इस मामले पर प्रमुखता से चर्चा हुई। संघ का कहना है कि शिक्षक बंधुआ मजदूर नहीं है, इसलिए स्कूल छुट्टी के बाद या छुट्टी के दिन कार्य क्यों करेंगे। यदि प्रशासन का रवैया इसी तरह से रहा तो इसको लेकर आंदोलन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग से इसकी पूरी रिपोर्ट मंगवाई है और सोमवार को इस मामले पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। होर्मुज स्ट्रेट और ओमान की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन को लेकर भारत और अमेरिका के बीच टकराव खुलकर सामने आ चुका है। ओमान तट के पास अमेरिकी हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत के बाद भारत ने हर स्तर पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। तो उधर अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि नाकेबंदी का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा और हमारे आदेशों का पालन करना होगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य और रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लेकर बड़ा बयान दिया। ओल्ड पेंशन से संबंधित सवाल पर श्री नड्डा ने कहा कि इस मसले पर हमारी नीति स्पष्ट है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघ द्वारा पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से दूध खरीद व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सरकार ने गाय के दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को 32 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति किलो और भैंस के दूध पर 47 रुपए से बढ़ाकर 71 रुपए प्रति किलो कर दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग ने सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला नगर निगमों की नवगठित परिषदों की पहली बैठक के आयोजन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश सरकार ने 29 जून को इन चारों नगर निगमों की पहली बैठक आयोजित करने की तिथि निर्धारित की। प्रदेश के सामान्य जलाशयों, नदी नालों तथा उनकी सहायक धाराओं में मछलियों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए 16 जून से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि के दौरान प्रदेश के सभी सामान्य जल स्रोतों में किसी भी प्रकार के मत्स्य आखेट तथा मछली बिक्री की अनुमति नहीं होगी। ये जानकारी मत्स्य विभाग के निदेशक एवं प्रधान मुख्य मत्स्य संरक्षक विवेक चंदेल ने। प्रदेश सरकार ने जिला परिषद कैडर के नियमित कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 23 सितंबर 2022 से 6 मार्च 2024 तक के संशोधित वेतनमान का लंबित एरियर जारी करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेश भर के हजारों कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी जिला परिषदों को आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। समग्र शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश द्वारा नवाचार परियोजना के तहत राज्य भर में जल एवं जलवायु संरक्षण अभियान शुरू किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के सभी 12 जिलों के कुल 2662 चयनित सरकारी स्कूलों में पीने के पानी की शुद्धता जांचने के लिए फील्ड टेस्टिंग किट वितरित की जाएगी। पर्यटन हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है, जो न केवल राज्य की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पहचान दिलाता है, बल्कि हजारों लोगों की आजीविका से भी जुड़ा हुआ है। इसी क्षेत्र की संभावनाओं को नए आयाम देने के लिए राज्य सरकार सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में जिला कांगड़ा के धर्मशाला के नड्डी क्षेत्र में विकसित की जा रही इको एडवेंचर जिपलाइन परियोजना एक महत्वपूर्ण पहल है। धौलाधार पर्वतमाला की मनमोहक वादियों से घिरा नड्डी क्षेत्र अपनी शांत प्राकृतिक सुंदरता और हिमालय के अद्भुत दृश्यों के लिए पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य रही है। नई जिपलाइन से ये क्षेत्र रोमांचक पर्यटन गतिविधियों के साथ और अधिक आकर्षक बनने जा रहा है। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी है। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी

0: और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: गर्मी में फंक्शन कौन रखता है? ऊपर से तुम्हारी साइड से इतने सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, आधे तो ऐसे हैं जिन्हें मैं पहली बार मिलने वाली हूँ। मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं उन सबसे कैसे डील करूँ। लो, ऊपर से ये फाउंडेशन खत्म हो गया, अब मैं अपने मुंह पे क्या लगा के जाऊँ?
5: ताला।
4: क्या?
5: अरे ताला भी खराब हो गया है। एक काम करते हैं, मार्केट चलते हैं, तुम्हारा मेकअप भी ले लेते हैं और नया ताला भी खरीद लेते हैं।
4: हाँ ठीक है, चलो मार्केट चलते हैं।
5: चलो।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी के रेडियो सेट पर चल रहा है गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी होस्ट एंड दोस्त सुमन। तो कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से प्यार भरी नमस्ते। इसी नमस्ते के साथ श्रोताओं आगे बढ़ते हैं। कहते हैं नई सुबह नया सवेरा, सूरज की किरणें हवाओं का बसेरा और मुस्कुराता हुआ आपका ये चेहरा, मुबारक हो आपको ये हंसी सवेरा। जी हाँ, इसी सवेरे के साथ उठ जाइए, जग जाइए और अपने कामकाज पर चलने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हमने पिछले कल छुट्टी का दिन बिताया है और आज है दिन सोमवार का। सोमवार के दिन हम लोग सभी अपने अपने कार्य पे व्यस्त हो जाते हैं और वही हमारी दैनिक रूटीन जो है शुरू हो जाती है। इसी दैनिक रूटीन के चलते बहुत सारे काम होते हैं और इस समय तो कुछ श्रोता तैयार होने में जुटे होंगे, कुछ जो है अपने कार्य के लिए निकल चुके होंगे, कार्यालय में पहुंचने वाले होंगे। सभी का अपना अपना शेड्यूल रहता है, अपने अपने काम के आज के हिसाब से हम सभी चलते हैं और पहुंच जाते हैं अपने अपने गंतव्य पर। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में तो हमें आगे चलना ही है, फिलहाल थोड़ा सा अब रुकना है और आप तक पहुंचाना है कार्यक्रम का ये प्यारा सा पहला गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओं, गीत संगीत भी कार्यक्रम में ज़रूरी होता है और संगीत ना हो तो हमारा कार्यक्रम थोड़ा सा अधूरा लगता है। इस अधूरेपन को पूरा करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। तो ये सुनते हैं इस गीत को।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमंतो। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम मौसम की बात करते हैं। मौसम आज का है 29 डिग्री सेल्सियस और मौसम में ह्यूमिडिटी बनी हुई है 40%। तो श्रोताओं, आज का बदलता मौसम आप सभी जानते हैं कि किस तरह सा का रह रहा है। पल में बारिश तो पल में तेज़ धूप हो जा रही है, तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। और इस रंग बदलते मौसम में हम सभी को अपना ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो अपना हल्का फुल्का छाता या दो पहिया वाहन चलाने वाले जो हमारे श्रोता है वो अपने साथ अपनी बरसाती ज़रूर रख सकते हैं, क्योंकि वैसे भी बरसात आने ही वाली है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें पहले से तैयार होना पड़ता है। अगर रास्ते में चले जाएँ और कहीं पर कोई परेशानी आए तो हमारे पास अपना छाता अपनी बरसाती हो तो दिक्कत नहीं होती है। और अगर छाता या बरसाती ना हो तो हमें कुछ पल के लिए रुकना पड़ता है, और कई बार ज़रूरी काम इतना होता है कि रुकना भी मुश्किल हो जाता है। तो पहले से की गई तैयारी कहीं ना कहीं हमारे लिए सहूलियत रखती है। तो इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ साथ फिर से थोड़ा सा हम वापस कार्यक्रम की ओर आते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम के

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से वापस आते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां अभी आप तक पहुंचानी हैं। तो श्रोताओं, 15 जून की बात करें तो 15 जून का दिन बहुत ही ख़ास दिन होता है। इस दिन 1947 की बात करें तो कांग्रेस ने भारत विभाजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। साथ ही साथ 1908 में कोलकाता शेयर बाज़ार की शुरुआत हुई थी और महान समाज सेवी अन्ना हजारे का जन्म जो है इसी दिन हुआ था। इसकी घटनाओं की बात करें तो 1908 में कोलकाता शेयर की आधिकारिक रूप से शुरुआत हुई थी, और साथ ही साथ जो है बात हम करें 2001 की, तो शंघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना की गई थी। मुख्य हस्तियों के जन्म भी आज ही दिन के दिन हुए हैं। जैसे हमने अभी अन्ना हजारे की बात की, तो भारत के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और भ्रष्टाचारी विरोधी आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार किसान बाबूराव हजारे का जन्म 15 जून 1937 को आज ही के दिन हुआ था। तो इस दिन मनाए जाने वाले और भी बहुत सारी जो आयोजन है जिनकी हम बात डिटेल में भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दें कि आज के दिन हम मना रहे हैं विश्व बुजुर्ग व्यवहार जागरूकता दिवस, और जो है इसमें वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ हो रहे दुर्व्यवहार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 15 जून को ये दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ वैश्विक पवन दिवस की बात करें तो पवन ऊर्जा के उपयोग और फायदों को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारियाँ जितनी आपके साथ साझी की जाएँ उतनी ही कम है, और ढेर सारी जानकारियाँ लिए हर दिन जो है आता है। तो जानकारियाँ और गीत संगीत हम आपको और भी सुनवाएंगे। फिलहाल कार्यक्रम में समय हो गया है।

0: 9:20 और आपको लिए चलते हैं समाचारों की ओर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, प्रदेश के 11 जिलों में नवनिर्वाचित प्रधान उप प्रधान आज लेंगे शपथ। कांगड़ा जिले में 18 जून को होगा समारोह। प्रदेश के सभी जिलों में आज आपदा प्रबंधन को लेकर होगा मेगा मॉकड्रिल का आयोजन। प्रदेश में यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान युवाओं के लिए हो रहे मददगार साबित। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में आज से 18 जून तक बारिश व अंधड़ चलने का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। कांगड़ा जिलों को छोड़कर प्रदेश के 11 जिलों में नवनिर्वाचित प्रधानों व उपप्रधानों का आज शपथ दिलाई जाएगी। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार कांगड़ा जिले में 18 जून को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रधानों व उपप्रधानों को शपथ दिलाएंगे। आज शपथ समारोह जिला स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, चंबा उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ऊना, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल सोलन और कृषि मंत्री चंद्र कुमार कुल्लू में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसी तरह उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सिरमौर, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी किन्नौर, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शिमला, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह मंडी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी बिलासपुर, जबकि आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा हमीरपुर में शपथ दिलाएंगे। इस बीच प्रदेश के 4 नगर निगमों के चुनाव में निर्वाचित पार्षद 29 जून को शपथ लेंगे। धर्मशाला, पालमपुर, मंडी, सोलन नगर निगम की 29 जून की पहली बैठक आयोजित होगी। प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इन चारों नगर निगमों में नए महापौर और उप महापौर का चुनाव भी इसी दिन होगा। उल्लेखनीय है कि 17 मई को मतदान और 31 मई को चुनाव नतीजे आए थे। प्रदेश के सभी जिलों में आज आपदा प्रबंधन को लेकर मेगा मॉकड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तकनीकी सहयोग से ये मॉकड्रिल करवाई जाएगी। इसके लिए भूकंप, भूस्खलन, बादल फटने से आने वाली बाढ़ और वनों की आग जैसी घटनाओं के परिदृश्य दिए गए हैं। पूर्वाभ्यास के दौरान इन्हीं परिदृश्यों के अनुसार राहत और बचाव कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान शामिल होंगे, जो आपदा तैयारियों में मौजूद कर्मियों की पहचान करने और उनके समाधान के सुझाव देंगे। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। वे कल शिमला में एक निजी विद्यालय में आयोजित वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज के समय में ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत और जीवन मूल्यों को भी नई पीढ़ी तक पहुँचाए। इस दौरान सुरेश कश्यप ने छात्रों को पुरस्कार भी प्रदान किए। भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा दिशा योजना के तहत टैली लॉ पहल पर क्षेत्रीय कार्यशाला और रिफॉर्म्स उत्सव का आयोजन आज राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में किया जाएगा। यह आयोजन पिछले 12 वर्षों में न्याय क्षेत्र में किए गए परिवर्तनकारी सुधारों को प्रदर्शित करने की दिशा में न्याय विभाग की सतत प्रतिबद्धता का हिस्सा है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस नामक वर्ष भर चलने वाले विधिक जागरूकता अभियान का शुभारंभ होगा। इस अभियान के तहत नागरिक केंद्रित कई गतिविधियां शुरू की जाएंगी। इस कार्यक्रम में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल होंगे। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। बाहरी राज्यों से पड़ रही प्रचंड गर्मी के चलते हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। इसी कड़ी में चंबा जिला में भी पिछले कुछ दिनों में पर्यटकों का ग्राफ बढ़ा है और पर्यटक जिला के पर्यटन स्थलों खजियार, डलहौजी व चंबा जिला मुख्यालयों में पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पर्यटन स्थलों में पुख्ता ट्रैफिक प्लान न होने की वजह से पर्यटकों को वाहन जाम की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। इसी कड़ी में पिछले कल भी खजियार डलहौजी मार्ग पर ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा रही और हजारों पर्यटक करीब चार घंटे जाम में फंसे रहे। सुविधाओं के अभाव पर पर्यटकों ने सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं।
2: बिहार से आए हुए हैं, यहाँ डलहौजी घूमने आए थे। इस खजियार में हम चार घंटों से जाम में फंसे हुए हैं। हम चाहते हैं जो भी टूरिस्ट आए वो ना फंसे, इसके लिए यहाँ का प्रशासन को, यहाँ की सरकार को कुछ व्यवस्था करनी चाहिए।
3: बिहार से आया हूँ और हम लोग घूमने के लिए आए हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। प्रशासन से और सत्ता में बैठे हुए लोगों से आग्रह पूर्वक कहना है, टूरिस्ट को अगर बुलाना है यहाँ पे तो यहाँ कानून व्यवस्था अच्छा करे, ट्रैफिक सिस्टम को सुधारे यहाँ की सरकार।
4: बहुत देर से हम लोग ट्रैफिक में फंसे, न वॉशरूम की व्यवस्था है यहाँ पे, लिटरली तीन घंटे से हम ट्रैफिक में, न पानी का कोई सुविधा है, मेडिकल फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ी इम्प्रूवमेंट करे, इतनी ज्यादा ट्रैफिक लग रही है, एटलीस्ट पुलिस यहाँ पे रखे जिससे हम तीन तीन घंटे तक ना फंसे टूरिस्ट।
1: प्रदेश में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से चलाए जा रहे यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान युवाओं के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। इन संस्थानों में युवाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण निःशुल्क दिए जा रहे हैं, जिसके बाद युवाओं को स्वरोजगार में मदद मिल रही है। यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सिरमौर में पिछले तीन वर्षो में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सिरमौर जिला संवाददाता।
5: ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सिरमौर जिला में पिछले तीन सालों में ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग के साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 166 युवतियों व महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। गत तीन वर्षों में 72 महिलाओं ने अपना स्वयं का रोजगार सृजित किया है, जबकि अन्य 94 प्रशिक्षण प्राप्त महिलाएं रोजगार के लिए प्रयासरत है। निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम महिलाओं को स्वावलंबन दिशा की तरफ बढ़ा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।

0: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में आज से 18 जून तक बारिश और अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विकसित वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम का दूसरा चरण रिकॉम्पियो में शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से आए 66 प्रतिभागियों का पारंपरिक खातक और किन्नौरी टोपी पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान आईटीबीपी के उप कमांडेंट वीरेंद्र सिंह और माई भारत हिमाचल प्रदेश के राज्य निदेशक ध्रुव डोगरा ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। विकसित वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती गांव में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना, सांस्कृतिक एकता का सुदृढ़ करना, स्थानीय परंपराओं का समझाना और विकसित व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के संकल्प को साकार करना है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी से जुड़ी खबर पर दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया है, हिमाचल और पंजाब में 8 ठिकानों पर ईडी ने दी दबिश, सांगला घाटी में होगी ग्रीन टूरिज्म की शुरुआत, सरकार ने तैयार किया प्लान, हिमाचल दस्तक की एक खबर है। मौसम की खबर को अमर उजाला और पंजाब केसरी ने लगभग एक जैसा शीर्षक दिया है, 7 जिलों में अंधड़ के साथ बारिश का अलर्ट, 20 तक मौसम खराब। दैनिक भास्कर के अनुसार मिलिट्री स्कूल चायल के पूर्व छात्रों को मिला राष्ट्रपति मुर्मू से सम्मान, स्कूल टाइम के बाद नहीं होगी जनगणना, शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है, हमीरपुर समेत कई जिलों में आदेशों में हुआ संशोधन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 11 जिलों में नवनिर्वाचित प्रधान उप प्रधान आज लेंगे शपथ, कांगड़ा जिले में 18 जून को होगा समारोह। प्रदेश के सभी जिलों में आज आपदा प्रबंधन को लेकर होगा मेगा मॉकड्रिल का आयोजन। प्रदेश में यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान युवाओं के लिए हो रहे मददगार साबित और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में आज से 18 जून तक बारिश व अंधड़ चलने का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: समाचारों के बाद शोधव कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सुमन लेकर हाजिर हुई हूँ इस प्यारे से कार्यक्रम को। तो शोधव कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वैश्विक पवन दिवस के बारे में। हर साल 15 जून को इसे मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पवन ऊर्जा की शक्ति, उसका उपयोग और हमारे भविष्य को स्वच्छ तथा हरित ऊर्जा प्रदान करने में इसकी संभावनाओं के बारे में भी वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाना है। तो साथ ही साथ इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की और बात करें तो इस दिवस की शुरुआत जो है 2007 में यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ द्वारा की गई थी और बाद में साल 2009 में इसे ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल और विंड यूरोप द्वारा एक वैश्विक कार्यक्रम के रूप में मान्यता भी दी गई थी। तो श्रोताओं, इसके उद्देश्य की बात करें तो इस दिन पवन ऊर्जा के महत्व को उजागर करता है जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारियाँ अभी और भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी के रेडियो सेट पर सुनाई दे रहा है गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में हम पवन ऊर्जा के बारे में श्रोताओं बात कर रहे थे। तो ये दिन दुनिया भर में राजनीतिक नेताओं, उद्योग के विशेषज्ञों और आम जनता को पवन ऊर्जा की क्षमता के बारे में शिक्षित करने के लिए और सेमिनार, पवन फार्म की यात्राएं और जागरूकता अभियान आयोजित आज के दिन किए जाते हैं। और भारत की स्थिति की बात करें तो भारत जो है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणीय देशों में शामिल है। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म कन्याकुमारी में स्थित है। नवीन तथा नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा भारत में पवन ऊर्जा के भविष्य को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। तो श्रोताओ, और भी जानकारियां हम आपके साथ कार्यक्रम में साझा करेंगे। फिलहाल इस समय कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो उज्जैन धर्मशाला।

श्रोताओ, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से हमारी वापसी हुई है और कार्यक्रम में कुछ स्थानीय जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। पर्यटन हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है, जो न केवल राज्य की प्रकृति और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पहचान दिलाता है, बल्कि हजारों लोगों की आजीविका से भी जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र की संभावनाओं को नए आयाम देने के लिए राज्य सरकार सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में जिला कांगड़ा के धर्मशाला के नड्डी क्षेत्र में विकास की जा रही इको एडवेंचर जिप लाइन परियोजना एक महत्वपूर्ण पहल है और धौलाधार पर्वत की मनोहर वादियों से घिरा नड्डी क्षेत्र अपनी शांत प्राकृतिक सुंदरता और हिमालय के अद्भुत दृश्य के लिए पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य रही है। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारियां भी और भी आपके साथ हम साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला। थोड़ी सी

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से वापिस आते हैं और अब हम बात करेंगे वर्ल्ड एल्डर एब्यूज की जानकारी आपके साथ साझा। और आज के दिन इसे हम मना रहे हैं तो इसे बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार एक गंभीर वैश्विक समस्या है। इसमें वृद्ध व्यक्तियों के साथ बुरा बर्ताव, अपेक्षा, शोषण, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना शामिल है। ये किसी भी ऐसे रिश्ते में हो सकता है जहाँ विश्वास की कमी होती है, जैसे परिवार, रिश्तेदार या फिर देखभाल करता। और विश्व स्तर पर इस समस्या के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल इसे हम 15 जून यानी आज के दिन मना रहे हैं। और दुर्व्यवहारों की बात करें तो इसमें शोषण, शारीरिक शोषण शामिल है। बुजुर्गों की मारपीट, धक्का देना, जबरन बांध कर रखना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इसमें शामिल है। और आर्थिक शोषण की बात श्रोताओं करें तो बुजुर्गों की संपत्ति, पेंशन या पैसे का उसकी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल करना भी एक शोषण में शामिल रहता है। अपेक्षाओं की बात करें तो बुजुर्गों की बुनियादी ज़रूरतें, भोजन, दवा, साफ सफाई और चिकित्सा का जानबूझकर पूरा ना करना भी शोषण के अंतर्गत ही आता है। और यौन शोषण की बात करें तो वृद्ध व्यक्तियों की सहमति के बिना उनके साथ किसी भी यौन गतिविधि को अपनाना भी ये अब्यूज़ के अंतर्गत आता है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ और भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला और हम बात कर रहे हैं अपने बुजुर्गों के बारे में। श्रोताओं, हमारे बुजुर्ग घर की शान होते हैं और यूं कह सकते हैं कि घर की चाबियां भी होते हैं। उनके घर पर रहते हुए हमें किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होती है। हम कहीं बाहर भी जाएँ तो हमें पता होता है कि हमारे बुज़ुर्ग घर पर हैं, वो देखभाल कर लेंगे। और बुज़ुर्ग घर पर ना हो तो हमें ताले लगाने पड़ते हैं, सो टेंशनें होती हैं। तो एक समय होता है श्रोताओ, बुज़ुर्ग हमारा ध्यान रखते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, और एक समय ऐसा आ जाता है जब हमें बुज़ुर्गों का ध्यान और ख्याल रखना पड़ता है। तो उनका ख्याल रखने के लिए हमें थोड़ा सा समय देना पड़ता है। कहीं बाहर हम गए हों और घर पर आते ही थोड़ा सा हम उनके साथ बैठ सकते हैं, ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है क्योंकि आजकल की जीवन शैली बहुत ही व्यस्त है, तो हम समय नहीं दे पाते हैं। एटलीस्ट खाना खाते समय, रात का भोजन हम इकट्ठे कर ले तो खाने की मेज़ पर, खाने की टेबल पर हम थोड़ा समय अपने बुज़ुर्गों को भी दे सकते हैं। साथ ही साथ कोई ज़रूरी सलाह लेनी हो तो वो भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ घर के जितने भी महत्वपूर्ण फैसले होते हैं उनमें अपने बुज़ुर्गों की सहमति बहुत ज़रूरी होती है, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बुज़ुर्गों की द्वारा, बुज़ुर्गों की सेवा की हुई कहीं ना कहीं हमारे काम आती है। उनके साथ हमें दुर्व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कहीं आपको ऐसा दिख रहा है कि किसी बुज़ुर्ग के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसके कुछ संकेत भी हमारे सामने आते हैं, जैसे शरीर पर बिना किसी चोट के निशान, खरोंच या फिर स्वेलिंग आना, अचानक बहुत डरा डरा जो है कई बार हमारे बुज़ुर्ग महसूस करते हैं, और बैंक खाते में असामान्य रूप से पैसों का निकलना, उससे भी बुज़ुर्ग तनाव में रहते हैं, टेंशनें उन्हें रहती हैं। तो थोड़ा सा हम उनसे बात करके जान सकते हैं कि उन्हें किस तरह की परेशानी है। या फिर कई बार क्या होता है कि हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं श्रोताओं, वो साफ सुथरे कपड़ों में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ज़्यादा गंदे कपड़े उनके हों तो इनसे भी हमें पता चल जाता है कि उनके साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार हो रहा है। कुपोषित दिखना या दवाइयाँ समय पर ना मिलना भी दुर्व्यवहार के संकेत हो सकते हैं। तो श्रोताओं, छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और अपने बुज़ुर्गों को सही समय पर खाना, भोजन, दवाइयाँ और उनकी देख रेख करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक शरीर चलता है वो अपना गुजारा और अपने कामकाज खुद कर लेते हैं, एक समय ऐसा आता है श्रोताओं जब वो अपना ध्यान और ख्याल नहीं रख सकते हैं। उस समय में हमें यानी बच्चों को उनका ध्यान और ख्याल रखना होता है, तो ज़रूर उनका ख्याल रखें और ध्यान रखें। इसके साथ थोड़ा सा हम कार्यक्रम में फिर से रुकते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
4: श्रोताओं, इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और हम अपने बुजुर्गों की बात कर रहे थे। श्रोताओं, बुजुर्ग हमारे बोझ नहीं होते हैं, आदर, सेवा और सम्मान के अधिकारी होते हैं। बुढ़ापा एक अनिवार्य शारीरिक अवस्था होती है, ऐसे में युवाओं को इस बात का गहराई से दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि उन्हें भी समय के इस चक्र से गुजरना पड़ता है। ऐसे में युवा पीढ़ी के सामने सामाजिक व्यवस्था को बरकरार रखने की बड़ी चुनौती होती है। युवाओं को बुजुर्गों की सेवा और संस्कार को बनाए रखना होगा, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों को बताना होगा कि बुजुर्ग जो है बोझ नहीं होते हैं, आदर, सम्मान और सेवा उनका अधिकार होता है, उन्हें उनसे वंचित नहीं रखना चाहिए। नई पीढ़ी को ये भी बताना चाहिए कि बुजुर्गों का तिरस्कार एक अपराध के बराबर होता है। कहते हैं, जितने हम बुजुर्गों की सेवा और आदर करेंगे, उतना ही जीवन में हमारा साथ अच्छा होता है। बुजुर्गों को खुश रखना बेहद ज़रूरी होता है, और क्योंकि एक दिन ऐसा आता है जब हमें भी इस अवस्था की ओर जाना होता है, और कहते हैं जो बोया है वही हम पाते हैं। जो अगर हमने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया होता है, तो हमारे साथ जब बुरा व्यवहार होता है, तब हमें पता चलता है कि हमने अपने बुजुर्गों के साथ कितना बुरा किया था। तो जीवन में आए हैं तो हमेशा अच्छे काम करते चलिए, अच्छे कामों का नतीजा भी अच्छा ही निकलता है। तो श्रोताओं, इन्हीं बात और जानकारियों के साथ कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुँचाते हैं। आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्राकृतिक फोटोग्राफी दिवस के बारे में। हर साल 15 जून को इसे मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रकृति की सुंदरता के बारे में बताना है और उसे अपने कैमरे में कैद करना है। श्रोता, बहुत सारे लोगों को, इवन आपने फोटो खींचते हुए फॉरनर लोगों को देखा होगा कि वो कहीं भी जंगल पर, पहाड़ों पर फूलों की तस्वीरें लेते, पहाड़ों की, पेड़ों की तस्वीरें लेते और साथ ही साथ पक्षियों की तस्वीरें लेते रहते हैं और हम उन्हें देखते हैं, निहारते हैं और काफ़ी खुश भी होते हैं। अच्छा लगता है, वो भी एक स्माइल के साथ हमारा स्वागत करते हैं और हम भी उनसे हेलो हाई करना पसंद करते हैं और खुश होते हैं। तो श्रोतो, इस दिन की शुरुआत नॉर्थ अमेरिका नेचर फोटोग्राफी एसोसिएशन द्वारा 2026 में की गई थी और माफ़ कीजिएगा 2006 में की गई थी। इसका लक्ष्य लोगों को बाहर निकलने, प्रकृति के करीब जाने, प्राकृतिक दुनिया को देखने और फोटोग्राफी के माध्यम से इसके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। नेचर फोटोग्राफी का श्रोताओं मतलब ये है कि खुले वातावरण में प्रकृति की तस्वीरें खींचना और साथ ही साथ पहाड़, नदियाँ, जंगल और सूर्य अस्त और उदय होते की तस्वीरें लेना भी इसमें शामिल रहता है। जानवरों, पक्षियों, कीड़े मकोड़े, वनस्पति और साथ ही साथ जटिल आकृतियों और बारीकियों की तस्वीरें लेना भी इस नेचर फोटोग्राफी में शामिल रहता है। तो बहुत सारे लोगों को इस तरह का शौक होता है और वो उठाते हैं अपना कैमरा और निकल पड़ते हैं तस्वीरें लेने के लिए, यादों को रिकॉर्ड करते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक दुनिया और पारिस्थितिक तंत्र का एक हिस्सा भी बनते हैं। तो श्रोताओ, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं और कभी एकांत में बैठे हों तो उन्हें हम निहार भी सकते हैं, देखते हैं और अच्छा लगता है और बहुत अच्छी प्रकृति की तस्वीरें जो है हम संजो कर रख सकते हैं। प्रकृति के करीब जाने का हमें मौका भी मिल जाता है और वैसे भी देखा जाए तो प्रकृति बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी होती है, दिल को सुकून देती है, आंखों को आराम देती है। तो श्रोताओं, इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ साथ फिर से हम कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोता, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में हम प्रकृति फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं। तो ये फोटोग्राफी क्या होती है? प्रकृति फोटोग्राफी हमारे प्राकृतिक जंगल की सुंदरता और भव्यता को दर्शाती है। इसमें वन्य जीवों, पौधों और प्राकृतिक दृश्य और बनावट को के नज़दीक से चित्र खींचे जाते हैं और इनका उद्देश्य पर्यावरण और उसके जीवों के सार को कैद करना है। विभिन्न जानवरों, विविध परिस्थिति तंत्रों और फूलों की जटिल आकृतियों की कहानी कहना है। प्रकृति फोटोग्राफी के दोहरे उद्देश्य हैं ये। इसमें पहाड़ों से लेकर तितलियों के कोमल पंख तक संसार की अपार सुंदरता को सराहना करने का अवसर देती है। साथ ही साथ ये पर्यावरण जागरूकता और संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रकृति के चमत्कारों को लोगों के घरों तक पहुंचाना, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की रक्षा करने की समझ, सम्मान और इच्छा को बढ़ावा देती है। तो श्रोताओ, ये तो है प्रकृति के करीब जाकर हम प्रकृति को कैमरे में कैद करके अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। और अपनी जानकारियों के साथ थोड़ा सा कार्यक्रम में लेते हैं विराम और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये गीत। आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
4: श्रोताओं, इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आरजी सुमन। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारी बात प्रकृति फोटोग्राफी को लेकर हो रही थी। तो ये कई प्रकार की होती है। प्रकृति फोटोग्राफी एक विशाल और रोमांचक क्षेत्र है, और साथ ही साथ इसमें अन्वेषण के लिए अनेक उपशैलियाँ मौजूद रहती हैं। प्रकृति जगत की सुंदरता असीम है, जो फोटोग्राफी को उसके सार को कैद करके अनगिनत अवसर हमें प्रदान करती है। इसके साथ साथ श्रोताओं, लैंडस्केप की बात करें तो लैंडस्केप फोटोग्राफी का मतलब है विशाल मनोरम दृश्य की भव्यता को कैमरे में कैद करना, और साथ ही साथ जो है कैमरे से चित्र बनाने की कला है। इसमें कैनवास स्वयं दुनिया होती है, और जो पहाड़ों, नदियों, जंगलों और साथ ही साथ खेतों से भरी होती है। हर लैंडस्केप एक अनोखी कहानी कहता है, और फोटोग्राफी का काम है उसे सुनना और साथ ही साथ तस्वीरों में उतारना भी शामिल रहता है। वन्यजीवी फोटोग्राफी की श्रोताओं बात करें तो वन्यजीवी फोटोग्राफी में जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में कैद करना शामिल है। ये धैर्य और स्ट्रिक्टता का खेल है, जो फोटोग्राफी की पृष्ठभूमि में घुल मिल भी जाता है। और इसके साथ साथ जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। तो श्रोताओं, फोटोग्राफी से जुड़ी हुई और भी जानकारियां हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

शब्द इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से वापिस आते हैं। मन तो नहीं कर रहा था गीत कि गीत बंद हो जाए या ख़त्म हो जाए, लेकिन क्या करें, बहुत सारी बातें भी आपके साथ करनी है। समय जितना भी हमारे पास रहता है, मन करता है अपने श्रोताओं के साथ जितना हो सके बात कर ली जाए, तो श्रोताओं और जानकारियां भी साझी की जाएँ। खैर, आते भी हम इसीलिए हैं कि अपने श्रोताओं तक जानकारियां पहुंचा सकें। तो श्रोताओं, हमारी बात जो है प्रकृति फ़ोटोग्राफी को लेकर हो रही थी, तो मैक्रो फोटोग्राफी की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा दिखाने की कला होती है। ये एक ऐसी दुनिया की यात्रा है जिसमें नंगी आँखों से नहीं देखा जा सकता है, और कीड़ों से लेकर फूलों तक हर चीज़ को सूक्ष्म विवरणों को उजागर करती है। मैक्रो फोटोग्राफी ये अवधारक लेंस के देखने के समान होती है, जो हमारे आसपास की दुनिया को एक नए नज़रिए से देखने का अवसर भी हमें प्रदान करती है। अब हवाई फोटोग्राफी की शोध बात करें, तो हवाई फोटोग्राफी हमें दुनिया का विहंगम दृश्य प्रदान करती है। इसमें अमूर्त कलाकृतियों में परिवर्तन हो जाता है, और ये एक अनूठा प्रक्षेपण प्रदान करती है जो आमतौर पर पहुँच से बाहर होता है और पृथ्वी की सुंदरता को कैमरे में कैद करता है। तो श्रोताओं, और भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल एक तड़कता भड़कता गीत आप तक फिर से पहुंचाते हैं।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर शोध इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला में थोड़ी सी बात हम पानी के भीतर फोटोग्राफी की श्रोताओं कर लेते हैं। पानी के भीतर की फोटोग्राफी हमें महासागर और झीलों के रहस्यमय गहराइयों में ले जाती है। ये जीवन और रंगों के भीतर एक ऐसी दुनिया को जागर करती है जो सतह के नीचे की मनमोहक सुंदरता को दर्शाता है। साथ ही साथ श्रोतो प्रकृति फोटोग्राफी के प्रत्येक प्रकार की अनूठी खूबियाँ और चुनौतियाँ होती हैं। प्रत्येक के लिए अलग अलग कौशल और उपकरणों की आवश्यकता भी रहती है और इन सभी का एक ही लक्ष्य होता है, प्रकृति दुनिया की सुंदरता, रहस्य और आश्चर्य को कैमरे में कैद करना और जनता तक पहुँचाना। तो श्रोतो अपनी जानकारियाँ को थोड़ा सा यहीं पर देते हैं विराम और इन्जॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और हम बात कर रहे थे प्राकृतिक फोटोग्राफी के बारे में। प्रकृति से जुड़ी हुई बहुत सारी तस्वीरें हर कोई लेना चाहता है। कोई फूलों के पास खड़े होकर फोटो लेता है, तस्वीर लेता है, तो कोई जंगल में जाकर लेता है, कुछ पहाड़ों की लेते हैं, तो कुछ पानी की लेते हैं। प्रकृति के करीब जाना हम सभी को बहुत ही ज़्यादा सुकून देता है। प्रकृति फोटोग्राफी की असली खूबियाँ यही नज़र आती है। ये अमूर्त को मूर्त रूप देता है और साथ ही साथ ये तस्वीरें जलवायु परिवर्तन के संकट को उस सतह से मानवीय रूप देती हैं। और साथ ही साथ श्रोताओं, इसके अलावा प्रकृति फोटोग्राफी पृथ्वी के जैव विविधता के प्रति सराहना को बढ़ावा देती है, अज्ञात या अनोखी प्रजातियों और आवासों को भव्यता को दर्शाती है, साथ ही साथ जिज्ञासा और जुड़ाव को जागृत भी करती है। तो श्रोताओं, अपनी जानकारियों को थोड़ा सा देते हैं विराम और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

चलो इसी गीत के साथ हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर। तो अब चलते चलते आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम प्यारा सा गीत। आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी है। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर, वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: इतनी गर्मी में फंक्शन कौन रखता है? ऊपर से तुम्हारी साइड से इतने सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, आधे तो ऐसे हैं जिन्हें पहली बार मिलने वाली हूँ। मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन सब से कैसे डील करूँ। लो, ऊपर से ये फाउंडेशन खत्म हो गया, अब मैं अपने मुंह पे क्या लगा के जाऊँ?
7: ताला।
6: क्या?
7: अरे ताला भी खराब हो गया है। एक काम करते हैं, मार्केट चलते हैं, तुम्हारा मेकअप भी ले लेते हैं और नया ताला भी खरीद लेते हैं।
6: हाँ ठीक है, चलो मार्केट चलते हैं।
7: चलो।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

एफएम पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल। पिछले 12 सालों में 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी है। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: इतनी गर्मी में फंक्शन कौन रखता है? ऊपर से तुम्हारी साइड से इतने सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, आधे तो ऐसे हैं जिनमें पहली बार मिलने वाली हूँ। मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन सबसे कैसे डील करूँ। लो, ऊपर से ये फाउंडेशन खत्म हो गया, अब मैं अपने मुंह पे क्या लगा के जाऊँ?
7: ताला।
6: क्या?
7: अरे ताला भी खराब हो गया है। काम करते हैं, मार्केट चलते हैं, तुम्हारा मेकअप भी ले लेते हैं और नया ताला भी खरीद लेते हैं।
6: हाँ ठीक है, चलो मार्केट चलते हैं।
7: चलो।

0: नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब समय है दोस्तों कार्यक्रम हमारी सेहत का। तो दोस्तों ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी संस्था ऑर्गन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर।
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं अर्णव बंसल ऑर्गन इंडिया से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे एक कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार। आज हमारे शो में एक बहुत खास मेहमान है, एक ऐसी बेटी जिसने 27 साल की उम्र में अपने गुर्दे को दान करके अपने पिता को एक नया जीवन दिया। स्वारिका सरपेन की जन्मभूमि तो कोलकाता है मगर कर्मभूमि बैंगलोर है। ये एक मैनेजर है सेंट गोबिन में। स्वारिका, हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
3: थैंक यू अर्णव, आपका धन्यवाद मुझे इस शो में स्वागत करने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी।
2: तो स्वारिका जी, अब हम आपकी कहानी की ओर चलते हैं, तो आप हमें थोड़ा सा बताइए अपने बारे में कि ये सब कैसे शुरू हुआ, क्या मुश्किल आन पड़ी कि आपको अपना गुर्दा दान देना पड़ा अपने पिताजी को, और ऐसी आपके पिताजी को क्या असुविधा थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ।
3: बिल्कुल, तो ये लास्ट ईयर 2021 अक्टूबर में मैंने अपनी वन किडनी डोनेट की है अपने फादर को। एंड ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था लाइक जब ये डिसीजन हमको फर्स्ट टाइम हमने लेना पड़ा था एज अ फैमिली वॉज मार्च 2021, जब हमें फर्स्ट टाइम पता चला था कि ऐसा सिचुएशन है कि मेरे पापा को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। तो मेरे पापा डायबिटिक हैं बहुत सालों से, एंड बाकी लाइक बीपी की परेशानी भी रही है उनसे काफ़ी रही है उनको काफ़ी सालों से। तो उनको क्रॉनिक किडनी डिजीज थी, बट वो क्रॉनिक किडनी डिजीज काफ़ी मैनेज थी, एकदम मैनेज वे में वो चल रही थी, कोई इशू ऐसा मेजर नहीं हुआ था। बट उनको 2020 में कोविड हुआ था, 2020 फर्स्ट वेव जब फर्स्ट टाइम कोविड आया था, तो उस समय जुलाई में उन्हें कोविड हुआ था। एंड वो बहुत ही हमारे लिए डिफिकल्ट समय था, हमें उस समय हॉस्पिटल भी नहीं मिल रहे थे एंड उस समय टेस्ट भी नहीं होते थे आई रिमेम्बर। एनीवे हमें हॉस्पिटल मिले एंड बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से उस समय वो बाहर आए थे। डॉक्टर्स ने उस समय हमें लगभग बोल दिया था कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है जब वो आईसीयू में एडमिट हुए थे। तो वैसा सिचुएशन था, वो जुलाई 2020 की मैं बात कर रही हूँ। बट उसके बाद भी मैनेज था, लाइक उस समय उनका जो वैल्यू था किडनी से रिलेटेड वो अचानक से बहुत ज़्यादा शूट अप हो गई थी। बट फिर भी वो इतने मंथ मैनेज था, लाइक 6-7 मंथ लाइक कोविड जब वो रिकवर कर गए कोविड से, तो अल्टीमेटली वो वैल्यूज भी काफ़ी नॉर्मल हो गई थी। बट फेब्रुअरी 2021 से अचानक से उनकी जो रिपोर्ट थे बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल हो गए, लाइक दे वर इंडिकेटिंग कि लेवल्स आर वेरी वेरी अप। तो हम लोग भी बहुत परेशान थे, वी कंसल्टेड आवर फैमिली डॉक्टर एज आई वी आर फ्रॉम कैलकटा, वी विजिटेड देयर, हम वहाँ पे अपने फैमिली डॉक्टर जो बहुत साल से जिस नेफ्रोलॉजिस्ट को वो कंसल्ट कर रहे थे उनको दिखाया। तो ही सेड कि अभी टाइम आ गया है कि आप ट्रांसप्लांट कंसिडर करिए। उस समय मैं उनके साथ नहीं थी कैलकटा में, बिकॉज मैं हैदराबाद में रहती थी उस समय, एंड इवन लाइक वी हैड जस्ट गॉन कैलकटा टू कंसल्ट द डॉक्टर। तो जब वो वापस आई कैलकटा से टू हैदराबाद, माय फैमिली व्हेन दे केम बैक, तो कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे ये न्यूज़ बताई। तो इट वॉज वेरी वेरी शॉकिंग फॉर मी। एंड उसके बाद हमने बहुत सारे टॉप डॉक्टर्स ऑफ हैदराबाद को कंसल्ट किया, बिकॉज हम ये मानना नहीं चाहते थे कि जो कैलकटा के डॉक्टर ने हमें बताया है वही कोर्स ऑफ एक्शन है। हमें और ओपिनियंस चाहिए थे डॉक्टर से कि कुछ और भी तरीका है क्या इसको सॉल्व करने का। तो ये सिचुएशन था जो लाइक हमें डिसीजन इस डिसीजन को लीड किया, बिकॉज सारे डॉक्टर्स ने हमें यही बोला, सारी टॉप डॉक्टर्स से भी जब हमने कंसल्ट किया सबका मोर और लेस सेम एक ही मानना था कि ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांटेशन बेस्ट ऑप्शन है इस समय।
2: अच्छा, तो जब डॉक्टरों ने बोला कि आप लोगों को प्रत्यारोपण की जरूरत पड़ेगी, तो आप लोगों ने मृत डोनर ढूंढने की कोशिश की या फिर अपने परिवार में ही डोनर ढूंढना शुरू कर दिया?
3: जब पहली बार हमें पता चला एंड स्पेशली जब मुझे पता चला, अगर मैं अपनी फीलिंग्स की बात करूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या सुन रही हूँ. एंड आई एम वेरी श्योर मेरी फैमिली को भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है. बट जो भी हमारा नॉलेज था, और दो तीन डॉक्टर से ऑलरेडी बात हो गई थी, तो उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया था कि कैडेवर डोनर जो होता है कि डेड पर्सन से ऑर्गन डोनेशन लेना वो क्या है, प्रोसेस होता है, एंड लाइव ऑर्गन डोनेशन क्या प्रोसेस है. तो तब तक हमें दो तीन डॉक्टर्स से जब हम कंसल्ट कर चुके थे, तो हमें उन्होंने ही डॉक्टर्स ने ही आइडिया दिया था कि कैसा प्रोसेस होता है. तो हमने एक बार उसके बारे में बात की थी, बट ये कैडेवर डोनेशन का कोई टाइमलाइन नहीं है कि कब एक पर्सन को ऑर्गन मिलेगा. वेटिंग टाइम कुछ ईयर्स तक लास्ट कर सकती है. एंड हमें हमारी फैमिली में किसी को भी वो रिस्क के बारे में हमें नहीं सोचना था कि इतने साल वेट करे. एंड वैसा ही सिचुएशन होता है एक्चुअली जब किसी को ऑर्गन रिसीव करना होता है, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उस तरह से किसी को ऑर्गन मिल पाए. बट इसमें कितना टाइम लगेगा उसका कोई गारंटी नहीं है. तो हम लोग ने लाइव ऑर्गन डोनेशन को ही देखा. विद इन फैमिली ही हमने सोचा कि जितना जल्दी हो पाए विद इन फैमिली हम देखते हैं कि कौन सूटेबल मैच हो सकता है एंड कैसे इसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी निकल सकता है.
2: साथियों, अब एक छोटे ब्रेक लेकर वापस आते हैं, और वापस आकर हम चर्चा जारी रखेंगे स्वरेखा जी के साथ और इनकी कहानी को पूरा जानेंगे. धन्यवाद.
1: ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव.
4: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आंखें किसी को दे सकते हैं, तो हमारी आंखों से वो दुनिया को देख सकता है. हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं, और किसी और को जिंदगी मिल जाएगी. मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने जिंदगी और गुजारी. ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा जिंदगी दे सकता हूँ. अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं, तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद. हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी ज़िंदगी बच सकती है. आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं. हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का कि ज़िंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा. एक व्यक्ति 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है. 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए. तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं. हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जानें कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है. उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे. तो आज ही फ्लैश करिए और हमारा साथ दीजिए.

0: साथी है।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
2: नमस्कार, वापसी पर स्वागत है। हम स्वारिका जी से चर्चा पे हैं आज, जो हमें अपने गुर्दे दान की कहानी बता रही हैं। इन्हें अपना गुर्दा देके अपने पिताजी को एक नया जीवन दिया है। इन्हें गुर्दा दिए हुए एक साल हो गया और ये विश्व प्रत्यारोपण खेलों में भाग लेने जा रही हैं। तो अब हम चर्चा को आगे लेकर जाएं। तो आपके परिवार में आपके सिवाय कोई और भी था जो आपके पिताजी को गुर्दा दे सकता था?
3: तो मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरी एक एल्डर सिस्टर है और मेरी मॉम है। तो हम तीनों ही ऑप्शन थे जो हम लोग टेस्ट कर रहे थे। तो मेरी मम्मी का ब्लड ग्रुप मेरे पापा से अलग था, तो बिकॉज मैच था ही नहीं वहाँ पर, देयर वाज नो क्वेश्चन कि वो डोनेट कर सकती है डायरेक्टली। ऑल्दो वो बोल रही थी कि मैंने अपनी जिंदगी जी चुकी है, तुम लोग बच्चे हो अभी, तुम लोग का एज अभी बहुत कम है, मैं चाहती हूँ करना, बट क्योंकि वो मैच था ही नहीं तो वो हमारे हाथ में नहीं था, वी कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट। इन द केस ऑफ मैं और मेरी एल्डर सिस्टर, हमारा दोनों का ब्लड ग्रुप सेम था, सेम एज इन मैचिंग था फ्रॉम विद माय डैड। मेरा ब्लड ग्रुप इज सेम एज माय डैड एंड मेरी एल्डर सिस्टर का ब्लड ग्रुप इज ओ, सो शी कैन डोनेट टू एनी अदर ब्लड। तो हम दोनों एक्चुअली टेस्टिंग रिगरस जो भी प्रोसेस है, सारा प्रोटोकॉल सब कुछ फॉलो करके हम दोनों का हेल्थ का टिश्यू मैच और जो भी सारी प्रोसेस होती हैं टू बी फिट की मैच करने के लिए, जो भी प्रोसेस होती है डोनर और रिसिपिएंट के, वो लास्ट तक हम दोनों बहनों का हुआ था, बिकॉज हम दोनों तैयार थे डोनेट करने के लिए। एंड सिंस मैं छोटी बहन हूँ तो इवन मेरी बड़ी बहन वॉज वेरी पर्टिकुलर की नहीं, एंड उन्हें डोनेट करना चाहिए एंड नॉट मी। एंड सिंस मेरी शादी भी नहीं हुई थी to my family, मेरी मम्मी एंड my sister, मैं सबसे छोटी हूँ फैमिली में, वो सिचुएशन था ओवरऑल।
2: तो परिवार के सिवाय बाहर समाज भी बहुत बातें करता है, दोस्त लोग बहुत बातें बनाते हैं, तो उनने कुछ कहा आपको ऐसा जो आपको कोई बात चुभी हो या आपको लगी हो कि ये समाज की सोच गलत है या ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आप कुछ इस बारे में बताना चाहेंगी?
3: बिल्कुल बिल्कुल, ये इस विषय पे मैं थोड़ा बताना चाहूँगी क्योंकि इस विषय के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है और जो भी अभी भी ये बात सुनता है वो बहुत सारी बातें कहते हैं जो सही नहीं है और जो आपको अफेक्ट कर सकते हैं, अगर स्पेशली आप इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपने लिया है तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है। मैंने पहली बार ज्यादा लोगों को बताया ही नहीं था, मैंने डिसीजन लिया था एंड हमारी फैमिली के अंदर ही था, बिकॉज मुझे पता था कि बहुत सारी ऐसी कुछ बातें लोग कह सकते हैं जो सुनने में शायद अच्छी ना लगे, और मेरा डिसीजन तो पक्का था बिकॉज मुझे पता था कि मुझे ये करना है। आई डोंट थिंक कोई भी डॉटर कोई भी सन सोचेगा ऐसा कुछ करने के पहले, अगर उन्हें पता है कि उनके हेल्प से उनके पेरेंट्स की लाइफ बेटर हो सकती है, उनकी लाइफ बच सकती है, आई डोंट थिंक कोई भी बच्चा सोचेगा। तो मुझे पता था कि ये बातें सुनकर मे बी मैं डीमोटिवेटेड हो जाऊँ, बट फिर भी कुछ रिलेटिव या कुछ फ्रेंड ऐसा कुछ बोलते थे कि नहीं वो बहुत यंग है, उसकी शादी भी नहीं हुई है, उसके बच्चे भी नहीं हुए हैं, शी इज अ गर्ल। तो ये सब चीज मैं अपने अंदर में ये चीज अफेक्ट नहीं करने दे रही थी, बिकॉज डॉक्टर्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे एंड सोसाइटी बहुत सारी बातें कहेंगी, बट साइंस इज डिफरेंट। और एनीबडी जो भी इस बारे में थोड़ा पढ़े, थोड़ा डॉक्टर से हो नो जिन्हें पता है इसके बारे में, अगर वो बैठ के बात करे उन्हें समझ आएगा कि ये बिल्कुल ही नॉर्मल प्रोसेस है और पूरा रिगरस एकदम जो टेस्ट होता है फॉर बीइंग फिट फॉर ऑर्गन डोनेशन, वो इतने लंबे टेस्ट होते हैं और जब तक एक पर्सन पूरा हेल्दी नहीं है तब तक उसे कंसिडर नहीं किया जाता टू डोनेट। तो जब ये सारी चीजें मुझे क्लियर हो गई डॉक्टर से बात करके और जो भी मैंने अपना रिसर्च किया, तो मैं क्लियर थी कि इट इज द राइट डिसीजन एंड मैं अफेक्ट नहीं होने दूंगी कुछ भी कमेंट का अपने ऊपर, मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है, वो मेरा अप्रोच था। इनफैक्ट मैंने पहले मेंशन नहीं किया होगा बट मैं और मेरी सिस्टर वो हम दोनों ने टेस्ट के लिए हमने किया, बट क्योंकि मैं ज्यादा फिट थी एट दैट पॉइंट डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग, हालांकि दोनों ही मैच थे दोनों ही फिट थे, बट डॉक्टर्स का डिसीजन था दैट एट दैट पॉइंट अकॉर्डिंग टू वेट अकॉर्डिंग टू एवरीथिंग मैं ज्यादा फिट हूँ डोनेट करने के लिए, तो इसीलिए आई वॉज चोजन।
2: ओके, तो मैं बस ब्रेक में जाने से पहले एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि किसी भी तरह के ट्रांसप्लांट के बाद कोई फर्क पड़ता है?
3: इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमने डॉक्टर से इस बारे में डिस्कशन किया था, मेरी फैमिली ने डिस्कशन किया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई लेडी अगर अपना ऑर्गन डोनेट करे के बाद उसे बच्चे नहीं हो सकते. एंड अभी तक ऐसे मेरे कोई स्कूल के फ्रेंड्स भी है, लाइक मैं अपने एज के लोगों की बात कर रही हूँ, मैंने ऐसा डिसीजन कैसे लिया, मेरे बच्चे भी नहीं हुए हैं. तो वो मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. कुछ मंथ वेट करना होता है, लाइक इमीडिएटली ऑर्गन वुमेन शुड नॉट बी प्रेग्नेंट, लाइक ऐसा 6 months का थोड़ा गैप देना है कि बाद ऐसा कोई भी उसकी हेल्थ में फर्क नहीं पड़ता है. एंड हमें हेल्थ चेकअप, एनी ऑर्गन डोनर बी इट फीमेल या मेल, उनको रेगुलर हेल्थ चेकअप एवरी ईयर में वंस कराते रहना चाहिए. तो हमें अपने हेल्थ का ख्याल रखना है फॉर श्योर.
2: तो मैं सभी श्रोताओं से एक बार फिर कुछ समय का ब्रेक लेना चाहूंगा. हम जल्द ही लौटेंगे और स्वरेखा जी के साथ अपनी वार्तालाप जारी रखें.

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्ते, मैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे एक कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार। और स्वरिका जी के साथ चर्चा कर रहे हैं, जो हमें अपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में बता रही हैं। इन्हें हमें काफी कुछ बताया समाज की सोच के बारे में। इन्हें हमें बताया कि प्रेगनेंसी में प्रत्यारोपण का कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद भी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है। आइए चर्चा को आगे लेके चलते। तो स्वरिका जी, जब आपने निर्णय लिया कि आप अपना गुर्दा दान करेंगी, तब कागजी कार्य में कितना समय लगा और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि काफी सारे कागज भरवाते हैं अस्पताल वाले, काफी सारे डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
2: बिल्कुल, उस बारे में मैं कहना चाहूंगी, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। मार्च एंड में हमें पता चला था, अप्रैल से हमने टेस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था, बट कागजी काम में इतना टाइम लगा एंड जो हॉस्पिटल में भी कमी बैठती है, ये विद इन फैमिली डोनेशन की बात हो रही है यहाँ पे। कि मेरे खुद के पापा को मैं अपनी किडनी डोनेट कर रही थी, बट उसमें भी इतने सारे चेक्स हो रहे थे ये प्रूव करने के लिए कि अब मैं एक्चुअल में डॉटर हूँ। एंड उसके बाद भी हॉस्पिटल में कमिटी बैठती है लास्ट में पूरे फैमिली के साथ, ये चेक करने के लिए कि मेरी इसमें पूरी सहमत, मैं सहमत हुआ इस डिसीजन से, कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है मेरे पे। तो ये विद इन फैमिली भी इतना सारा प्रोटोकॉल फॉलो हुआ था और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का बहुत सारा काम करना पड़ा था, जिसमें 2 से 3 महीने लग गए थे। पुलिस स्टेशन में जाना, वहाँ से वेरिफिकेशन लेना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं डॉक्यूमेंटेशन के काम में उतना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुई थी, वो मेरी फैमिली ने किया था, बिकॉज मैं उस समय अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रही थी। बट वो डॉक्यूमेंटेशन के काम में इतना टाइम लगा था कि हमारे लिए इट वॉज वेरी डीमोटिवेटिंग, कि हम चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस हो जाए, ताकि मेरे पापा डायलिसिस में थे, तो मैं चाहती थी कि वो जल्दी से जल्दी डायलिसिस से फ्री हो पाए, वो अच्छे हो जाए, वो पूरा फैमिली ये चाह रहा था। बट बहुत सारी डिलेज हो रही थी ये सब प्रोसेस के वजह से। एंड मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि ये है विद इन फैमिली का प्रोटोकॉल, अगर कोई स्ट्रेंजर या नॉन रिलेटेड पर्सन डोनेट करना चाहे तो ये तो विद इन फैमिली का प्रोटोकॉल था जिसमें इतना टाइम लग गया। अगर किसी नॉन रिलेटेड पर्सन को डोनेट करना होगा तो वहाँ पे अलग कमिटी बैठती है, वहाँ पे जो सबमिट करना पड़े वो और भी ज्यादा लंबी चौड़ी होती है, उसमें और टाइम लग सकता है। तो ये एक सिचुएशन है जो मेरे लिए बहुत डिसहार्टनिंग है कि इतने सारे लोग हैं हमारी कंट्री में, हमारी वर्ल्ड में, बट फिर भी ये प्रोसेस इतना ज्यादा टाइम टेकिंग है कि बहुत टाइम लग सकता है। ऑलरेडी एक फैमिली जो सफर कर रही है, ऑलरेडी एक पेशेंट जो सफर कर रहा है, वहाँ पे ये सब चीजों से और जब टाइम डिले होता है तो वो बहुत डिसहार्टनिंग होता है। जितना जल्दी हो पाए उतना बेटर है।
1: तो आप और आपके पिताजी अब कैसे हैं? अब क्या जीवन में बदलाव आए हैं? 1 साल हो गया आपके ऑपरेशन को।
2: करेक्ट। तो मैं और मेरे पिताजी बिल्कुल ही हेल्दी हैं आफ्टर ऑर्गन डोनेशन एंड वो आफ्टर रिसीविंग ट्रांसप्लांट। तो आफ्टर जब ऑपरेशन हुआ था उसके बाद ही उनका इमीडिएट बहुत ही अच्छा रिकवरी हुआ था। ऑल्दो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स थे, बहुत स्ट्रिक्ट हमें रहना, इनिशियल 3 महीने बहुत क्रिटिकल, एक पेशेंट को जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है स्पेशली उसे बहुत बचा कर रखना पड़ता है, उसे रूम से नहीं निकलना होता बिकॉज वो इम्यूनो सप्रेसेंट भी खाते हैं, तो कोई भी इन्फेक्शन उन्हें बहुत जल्दी लग सकता है। एंड बहुत जो टेस्ट होते हैं ट्रांसप्लांट के बाद वो भी बहुत रिगरस होते हैं, एक पेशेंट को पूरे वॉच में रखना पड़ता है, डॉक्टर्स के साथ फ्रीक्वेंटली विजिट करना पड़ता है। ऑपरेशन के बाद से ही उनके जो वैल्यूज थे, उनके जो रिपोर्ट थे, वो बहुत ही अच्छे हो गए थे। ऑल्दो मुश्किलें थी क्योंकि उन्हें एकदम बचा के रखना पड़ता था, वो हॉस्पिटल में भी मेरे से ज्यादा दिन थे क्योंकि वैसा ही प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसप्लांट पेशेंट को बचा के रखना पड़ता है, बट मैं बहुत खुश थी, वो भी बहुत खुश थे कि इतना बड़ा, मेरा पूरा परिवार बहुत खुश था कि इतना बड़ा चीज जो था वो अच्छे से हो गया, जो भी मुश्किलें थी वो खत्म हो गई और एक नया जीवन था हमारे लिए, मतलब दूसरा मौका मिला हमें जिंदगी में, एक तरह से आप बोल सकते हैं। एंड अभी वो भी बिल्कुल फिट है, वो अपने खाने का बहुत ध्यान रखते हैं कि वो हेल्दी खाए, और फिर वो इनिशियल जो शुरू के 3 महीने थे वो बहुत बचा के रहे, फिर धीरे धीरे वो

0: घर से निकलने लगे, ऑफिस जाने लगे, तो ऐसे उनका नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो गया कुछ महीने के बाद. वो अभी भी अपने काम पे जाते हैं. और मेरे लिए भी मैं अपना खास ध्यान रखती हूँ सर्जरी के बाद, बिकॉज मुझे पता था कि मुझे फिट रहना है. मैं पहले भी लाइक फिटनेस के तरफ बहुत इंक्लाइन थी लास्ट 3 साल से, बट सर्जरी के बाद मुझे और भी ज्यादा इस तरफ इंटरेस्ट था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे फिट रहना है इसके बाद. और मोर देन एनीथिंग मुझे पता था कि मुझे एक एग्जाम्पल बनना है. ऑर्गन डोनेशन के बाद भी एक पर्सन बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है. तो मैंने स्पेशली न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट किया, क्या मुझे अपने नॉर्मल डाइट में खाना चाहिए फॉर अ क्विक रिकवरी, ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं. और कुछ मंथ एक्सरसाइज करना मुझे भी मना था, रिगरस एक्सरसाइज. बट एक बार जब वो टाइम इनिशियल जो 3 महीने थे, उसके बाद मैंने स्पेशल गाइडेंस लिया कि मुझे किस तरह से एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहिए. अब तो मैं जिम भी जाती हूँ, मेरा पर्सनल ट्रेनिंग भी लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत श्योर होना चाहती हूँ कि जो भी मैं एक्सरसाइजेस कर रही हूँ उनका फॉर्म करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट है, एंड मैं प्रॉपर गाइडेंस के अंडर कर रही हूँ. मैं खुद से भी कर सकती हूँ, बट अगर मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस मिले तो मैं और भी ज्यादा मोटिवेटेड रहूंगी. तो इसीलिए मैं ये सब चीजों को लेके पहले से बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ अपने ओवरऑल हेल्थ पे.
1: स्वर्गा जी, एक आखिरी सवाल हमारे दर्शकों के लिए, आप हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन करते हुए उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी ऑर्गन डोनेशन को लेकर, और आप क्या आखिरी शब्द कहना चाहेंगी जाने से पहले कि हम ऑर्गन डोनेशन को और बेहतर बना सकें हमारे देश में?
0: वो मैं जाने के पहले ये कहना चाहूंगी कि मुझे इस डिसीजन का कभी भी अफसोस नहीं हुआ. अगर मैं मुझे ये सब फिर से भी कभी करना पड़े अपने पापा की लाइफ को बेटर करने के लिए, मैं कभी सोचूंगी नहीं. एंड अभी जब मैं सब कुछ देखती हूँ कि मेरे ऑर्गन डोनेशन के वजह से मेरे पापा की लाइफ पहले से बहुत बेटर है, तो मैं एवरी डे मैं मुझे समझ आता है कि जो मैंने डिसीजन लिया था वो सही डिसीजन लिया था. और जो फीलिंग होता है, कोई भी ऑर्गन डोनर, जो भी ऑर्गन डोनेट करते हैं, जो भी लाइव ऑर्गन डोनर्स हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि उसके बाद जो एक फीलिंग होती है कि उनके वजह से किसी की लाइफ बेटर है, वो फीलिंग जो है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता. वो एक पॉजिटिविटी है जो आपके साथ हमेशा रहेगी कि आपने ऑर्गन डोनेट किया एंड उसके वजह से किसी का अच्छा हुआ. और मैं कहना चाहूंगी कि इस चीज को लेके एक्सेप्टेंस एंड अवेयरनेस की अभी भी बहुत जरूरत है, इसीलिए मैं गेम में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ. मैं एक मिसाल बनना चाहती हूँ कि एक ऑर्गन डोनेशन के बाद भी लोग फिट रह सकते हैं, और इनफैक्ट लोग फिट रह सकते हैं आफ्टर दिस.
1: धन्यवाद स्वरिका जी हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन करने के लिए. हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ बदलाव जरूर आएगा, और हम सारे अपने दर्शकों से अलविदा लेना चाहेंगे अगली बार तक. हम जल्दी ही मिलेंगे, और तब तक आप हमारी वेबसाइट पे अपना प्लेज फॉर्म भर सकते हैं www.organindia.org. और कोई भी ऑर्गन डोनेशन से जुड़ी जानकारी चाहिए हो तो हमारी हेल्पलाइन पर संपर्क करें 1800-120-3648. धन्यवाद.
2: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं. आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चहुं ओर फहराएं. आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं. आओ मिलके एक दिया जलाएं, दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का. जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं. आओ मिलके एक दिया जलाएं.
3: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंग दान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साह पूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन, फ्रांस।
0: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज वृद्धि दर्ज की गई है। सेंसेक्स 922 अंक बढ़कर 76,450 पर, जबकि निफ्टी 287 अंक बढ़कर 23,910 पर कारोबार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइन सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के।

0: सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: फंक्शन कौन रखता है? ऊपर से तुम्हारी साइड से इतने सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, आधे तो ऐसे हैं जिन्हें मैं पहली बार मिलने वाली हूँ। मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं उन सबसे कैसे डील करूँ। लो, ऊपर से ये फाउंडेशन खत्म हो गया, अब मैं अपने मुंह पे क्या लगा के जाऊँ?
5: ताला।
4: क्या?
5: अरे ताला भी खराब हो गया है। काम करते हैं, मार्केट चलते हैं, तुम्हारा मेकअप भी ले लेते हैं और नया ताला भी खरीद लेते हैं।
4: हाँ ठीक है, चलो मार्केट चलते हैं।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी बने होए हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया। अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेना तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल। पिछले 12 सालों में 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी है। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: फंक्शन कौन रखता है? ऊपर से तुम्हारी साइड से इतने सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, आधे तो ऐसे हैं जिन्हें मैं पहली बार मिलने वाली हूँ। मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं उन सबसे कैसे डील करूँ। लो, ऊपर से ये फाउंडेशन खत्म हो गया, अब मैं अपने मुंह पे क्या लगा के जाऊँ?
7: ताला।
6: क्या?
7: अरे ताला भी खराब हो गया है। एक काम करते हैं, मार्केट चलते हैं, तुम्हारा मेकअप भी ले लेते हैं और नया ताला भी खरीद लेते हैं।
6: हाँ ठीक है, चलो मार्केट चलते हैं।
7: चलो।

कानी दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कनमेश जशी हाजिर हो यो कार्यक्रम ले करी माटी दी महक ताशु तो पहले तो हाँ सारे जो ही माटी दी महक कार्यक्रम जो तो हाँ सारे दा ही शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। आज कने दिने दी यहाँ गल करिए, दिने की शुरुआत तो हाँ बेहतर सोच विचार करने की होनी।

0: है कने सकारात्मक सोच कने जड़े से तुहां अपने दिने दी जड़ा शुरुआत है से जरूर कीती होनी है। कने आजकना जड़ा दिन है 15 जून 2026 दा ए दिन कयो विशेष दिन जड़े से यहाँ आज इस दिन जो बना देन सोमवार दा ए दिन तुहां सारे जरूर इंजॉय भी करा देन। कने आज यहाँ जड़ा खास दिन क्या जड़ा खास दिन है से यहाँ बना देन सभी जरूर तुहां तक पहुँचाना है क्योंकि हर दिन दी अपनी जड़ा खासियत है से जरूर होंदी है। कने दिने दी खासियत अहां एक दिन ही नहीं समझनी है हर दिन अहां दिने जो खास जड़ा है से जरूर बनाना है। तो आज अहां जड़ा खास दिन बना देन से बना देन विश्व बुजुर्ग दुभार दिवस जड़ा जागरूकता दिवस है से जरूर आज अहां बना देन। कने तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर कने जुड़ी सकदे ताहां दे पहले श्रोता अहां कने जुड़ चुके हो न कर देन तिना कने गल बात। हेलो हेलो हेलो श्रोताओं कॉल जड़े से डिसकनेक्टेड है क्योंकि कुछ नेटवर्क दा जड़ा इशू है से जरूर चले है ता अहां फ्री ते वापिस जड़े से अपनी गलबात पर आंदे न। कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कने जुड़ सकते कने अहां कने गलबात जड़े से जरूर करी सकते। तो श्रोताओं कार्यक्रम च जुड़ने वास्ते जड़ा अहां दा नंबर है से पहले तुहां तक पहुँचाइन दे नंबर है 701-811-7091। तो इस नंबर पर तुहां कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा। तो श्रोताओं सुहाने पल तुहां सारे जी पता है जिड़ा हंदे सुहाने पल हन से आहंदे हमेशा अपने कन्ने जिड़ा पल हन बिताए जिड़ा पल हन से कुथी ना कुथी अहां जो संजोई करी जिड़े से रखदे न। कने जालू बुजुर्गों का जिहड़ा साथ है से अहां कन्ने होंदा है तो कुथी ना कुथी अहां दा कोई भी काम जिहड़ा से जल्दी आउंदा है कन्ने अहां काम जिहड़ा से प्रोपर तरीके ने करी पांदे न। तो अज कने दिने दी जिहड़ा खासियत है से जरूर अहां तुहां तक पहुँचाईती है। कने तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहां कन्ने जुड़ी सकदे तो श्रोता जरूर कनैक्ट अन कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी
0: जी स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना
1: जी। धन्यवाद
0: जी। तुहां कुत्थों ते बोला दे कने तुहां दा नां की है जी। जी मेघनाथ जी क्या काम कार लगे है तुहां क्या करा दे जी। मुबारक तुहां जो भी जी किस प्रकार जिहड़ा से तुहां संगरांद बनाई कने क्या क्या जिहड़ा संगरांदी दा जिहड़ा त्योहार है से किन्ना चलिया तुहां दा
1: बहुत वधिया चलिया
0: जी। तो दिन आ
1: जाना नमकीन चौल बनाए थे देसी देसी
0: घी जी जी। तो उनकी आवाज थोड़ी बड़ी कम कम हो दी जी।
1: दूध कन्ने
0: जी
1: ठीक है ना जी। वैसे ना कढ़िया रोटियां होना चाहिए पर आजकल कढ़िया रोटियां भूली
0: है जी। कढ़िया रोटियां थी तो हां याद जिड़े से जरूर दिलाई थी है ना जी।
1: हां ना छछा बनांदे कने कढ़िया रोटियां बनांदे लसियाड़े बनांदे लुंगड़ू बनांदे
0: जी लस्याड़ी लुंगड़ू छीछा वैसे भी अंबा दा जिहड़ा सीजन है चलिया तो मन तो करदा है ना कि छीछा खाने जो मिलियां कने कड़ियां रोटियां जिहड़ां से मिलियां पर हर कोई अजकल 10 मिंट वाला काम जिहड़ा है से 5 मिंट च करना चाहुंदा ना जी।
1: है चलिया ना था
0: जी जी
1: प्रेशर कुकर होई है गैस होई
0: जी
1: इंडक्शन होई है ना
0: जी जी
1: लगना।
0: जी जी जी पर इस धुएं दी भी कोई खासियत है ना जी स्वाद भी जरूर जी
1: ठीक है ना
0: जी जी जी। तो आज यहाँ जिड़ा कार्यक्रम च खास दिन बना देन से बना देन कि विश्व बुजुर्ग दिवस कन्ने जिड़ा दुव्य व्यवहार जिड़ा सा आंदा है तो तिदे उपर अहां गल बात करा देन ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी

0: जी तो तुहें क्या लगदा बुजुर्ग जड़े से परिवार दी ढाल होंदी ना जी।
1: ऐसा सही सती जी, लेकिन ये रस्ता तो हाँ तो आजकल समझा था तू है।
0: जी, तुहंदी आवाज बड़ी कम कम हो दी जी।
1: मैं बोला था आजकल समझा कौन है, 105 आदमी होने एक
0: जी, 105 आदमी समझते
1: बुजुर्ग की सेवा करा रहे या तेना
0: जी
1: कहना मानना दे, 95 आदमी बोल रहे या क्या कहते,
0: जी
1: तुआ भी अपनी जवानी है ये कितने वो कितने नौकी सौ गल्ला
0: जी
1: करते है
0: जी जी चलो,
1: ना।
0: हर कुसी दी सोच अलग अलग होंदी ना जी।
1: हाँ
0: जी
1: अपन
0: तो
1: कोई और
0: जी
1: पांच दे रहे हैं ना, क्या
0: जी
1: हाल सेवा करने। हाँ
0: जी जी
1: क्या हाल, हाँ
0: जी ता मेघनाथ जी, आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करके।
1: भजन सुनाई दिया, राम का संदेशा आया बुढ़िए बन गठड़ी।
0: जी, राम दा संदेशा आया बुढ़िए बन गठड़ी।
1: हाँ जी
0: जी जरूर, ये फरमाइश तुहों तक पहुँचांदे जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहों दा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने, तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहां करने जुड़ सकदे, कन्ने आहां करने गल बात जिहड़े से जरूर करी सकदे। दशो तो ये सफर तुहां तक रहना है 2 ते 3 बजे तक, तो जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम दे सफर जहां करने जुड़िया, कन्ने आहां करने जेड़ा गल बात है से जरूर करा कर देन अपने कार्यक्रम दा आगाज इस प्यारे दे गीत करने।
2: नूरपुर का राजा पानी भर रही लड़की पर मोहित हो जाता है। उसकी रानी बनने के प्रस्ताव को जब वो लड़की ठुकरा देती

तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कहने फिर यहाँ वापिस आयुन तुह तक गल बात करना कने तो सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर करने जरूर जिड़े से जुड़ी होने न आज दे मौसम दी गल करिए ता कुथी ना कुथी बारिश आला जिड़ा माहौल है से बनिया कने कुथी कुथी बरखा जिड़े से भी लगी हुए कने सिद्धबाड़ी धर्मशाला दी यहाँ गल करिए ता इत्थू भी बरखा जिड़े से लगी हुए कने तुहां सारे भी अपने अपने शहर दी जिड़ा मौसम है से जरूर यहाँ तक पहुँचाई सकते कि मौसम जिड़े से किस प्रकार बने हैं कने आज कना जिड़ा खास दिन है सभी अहाँ बना देन या जागरूक जरूर जिड़े से हो देन आजकने दौर दी अहाँ गल करिए शो तो आजकना जिड़ा दौर है से कुथी ना कुथी अहाँ बुजुर्गों की जिड़ा आज गल बात करा देन या खास दिन जिड़े से आज अहाँ बना देन 15 जून जो श्रोताओं 15 जून का एक खास दिन बुजुर्गों वास्ते कई बार होंगे ना कि बुजुर्गों कन्ने अहाँ अच्छा व्यवहार जिड़े से नहीं करते न तिदे उपर अहाँ जागरूक जिड़े से जरूर करा देन खुद भी अहाँ जागरूक हो दे कने तो हाँ जो भी जागरूक जिड़े से जरूर करा दे बुजुर्गों का जिड़ा मान सम्मान करना अहाँ वास्ते कितना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बच्चे जिड़ा न जिड़ा बच्चे न सभी बुजुर्गों ते बड़ा कुछ जिड़े से सीखने जो भी मिलता कने कहानियां ते ही यहाँ जो बड़ा कुछ जिड़े से यहाँ दे बुजुर्ग सिखाई करी जानते न अहाँ तिना दा मान सम्मान किस प्रकार करते न से यहाँ पर निर्भर करता है क्योंकि बच्चे वास्ते चाहे से दादा दादी एन तिना दा प्यार मिलना भी बच्चों जो बड़ा ज़्यादा जरूरी है पर अजकने दौर दी अहाँ गल करना तो कुथी ना कुथी परिवारों की अहाँ गल करना तो एकल परिवार जिड़े से तो हाँ जो दिखने जो मिलते न संयुक्त परिवार कुथी कुथी दिखने जो मिलते न पर पुराने समय की अहाँ गल करिए ज़्यादातर संयुक्त परिवार जिड़े से होंगे थे कने सारी मिली जुली करी जिड़े से अपने काम कार कर दे।

काम मैं तुह करा दे गलत है या तुह जेड़ा भी बोला दे ना से गलत है। ता बच्चे जो माता पिता अगर टोक दे ना तो कुथी ना कुथी से सही राह पर लेकर ही जान देना अपने बच्चे जो। तो आज हाँ जेड़ा गलबात करा दे ना से जरूर बुजुर्गों पर है कने तुह सारे भी जेड़े से बुजुर्गों का मान सम्मान करन। सिर्फ घरे की गल अहाँ नहीं करा दे अगर अहाँ बाहर कुछ जानते न या हाँ बस ट्रैवल करा दे न या कुछ भी जानते न अगर तुह जो लगता है कि बुजुर्ग हैं तिना जो अहाँ की मदद की जरूरत है तो जरूर तिना की मदद करन। अगर तुह कुसी की मदद कर देना कने कुसी दे चेहरे पर स्माइल जड़े से ले कर आते न तो तिना जो भी अच्छा लगता है कने खुद जो भी अच्छा जड़े से लगता है। तो श्रोताओं तुह सारी इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने। इसी कन्ने मुझे लगा था कि कार्यक्रम का सफर थोड़ा जहा अगे बढ़ाना पौना। हूँ तुह सोचे दे होने कि सफर अगे कि बढ़ना सफर अगे एक गीत संगीत कन्ने जरूर बढ़ाना है क्योंकि गीत संगीत जड़ा सियाह की जीवन च बड़ी अहम भूमिका अदा करते हैं। जालू गीत संगीत अहम गलबात कन्ने जुड़ी आते हैं तो जड़ा गीत संगीत कन्ने अहदा जड़ा सफर है से और भी सुहाना जड़ा से लगता है। तो इस सफर जो और भी सुहाना बनाते न तुह सारे ही इस गीत जो जरूर इंजॉय करा कने इस गीत जो ध्यान ने सुना कि इस गीत च क्या जड़ा से बोल बोलियो न कने किस प्रकार इस गाने का क्या मतलब है क्योंकि गीत संगीत भी यहाँ जो बड़ा कुछ सिखाई करी जानते न पर अहाँ सीखते न से यहाँ पर निर्भर करता है कि यहाँ किस प्रकार गीत संगीत ते सीखते न। तो श्रोताओं चलते न सुनते न इस प्यारी दिया फरमाइशा जो तुह सारे भी इंजॉय करा।

किसी के घर चले भी जाते हैं तो हम उस मोबाइल में खोए रहते हैं, लगभग दो दो तीन तीन घंटे बैठ के भी। तत्पश्चात हम उठ के चल पड़ते हैं, रास्ते में हमें याद आती है

अहमूला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तोहा सारे कार्यक्रम सुना दिन अपनी रेडियो दो शशि कने इसी कने तोहा सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दे फरमाइश। इस गीत की फरमाइश अह तक पहुंची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने कने तिना दा ना वे सुनील जी कने से रहने वाले न कोठिया जलोर ते ताशु तो तुहां सारे ये गीत ध्यान लगाई करी सुनने आने कने जरूर ध्यान लगाई करी सुनने आला था क्योंकि कोई जिहड़ा गीत होंदे से अह जो कुछ ना कुछ सिखाई करी जांदे न। अज कने दूर दी अह गल करिए तां जिहड़ा गाने दे बोल हन सेवन डुबदे रिश्ते कने इस जो गाया वे कर्नैल राणा जी ने तां बड़ा ज़्यादा अच्छा गाना जिहड़ा से गया कने जिहड़ा इस दे गाने दे बोल हन से अह जो पूरा जिहड़ा सार है से दसी करी जांदे न कि अजकना जिहड़ा दूर है से कुथी ना कुथी मोबाइल फोन हर कुसी ले मिलना मिलाना जिहड़ा से अह दा सिर्फ मोबाइल फोन तक ही सीमित जिहड़ा से होई आ। पुराने समय दी अह गल करिए तां पहले मोबाइल फोन जिहड़े से नहीं होंदे थे पर प्यार भावना एक दूए ने मिलन सार जिहड़े से जरूर दिखने जो मिलता था कने प्यार भावना जिहड़े से हमेशा एक दूए अंदर कायम रहती थी। पर मोबाइल फोन का ऐसा जाल है कि हाँ अपने जो समय नहीं दे पाते। इस गाने च भी बोलिया कि अहाँ अपने कन्ने बैठे हो फिर भी अहाँ जो मोबाइल फोन च इतना ज़्यादा अहाँ बिजी हैं कि अहाँ जो अपने दी भी खबर नहीं है कि अहाँ अपने कन्ने बैठे हो न कि अहाँ कुछ ने गलबात करा दे न सिर्फ अहाँ जो मोबाइल फोन ते मतलब है। तशो तो मोबाइल फोन जो थोड़ा दिया साइड रखा किने अपने जो प्यार अपने जो प्यार सम्मान जड़े से ज़रूर दिया। तो हाँ सारे जी पता है कि मान सम्मान देना हाँ वास्ते कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बुज़ुर्गों की हाँ गलबात जिहड़े से अज करा दे न कने तो हाँ सारे भी मेरी गलबात जो जरूर इंजॉय करा दे होने न कने जरूर ध्यान ने सुना दे होने न। बुज़ुर्गों का जिहड़ा प्यार है तिना का जिहड़ा आशीर्वाद है से अह जो मिली आंदा है तो हाँ अपनी जिंदगी च सफलता की ओर जरूर चलते न। सफलता दी जिहड़ा सीढ़ी है से जरूर चढ़ते न कने अपनी जिंदगी च हमेशा अगे जिहड़े से बढ़ते जाते न। शुतो तुह सारे भी इस कार्यक्रम के सफर कने जुड़ी सकते। ये सफर तुह तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक तो जल्दी जल्दी सफर कने जुड़िया अगर नहीं जुड़े न क्योंकि समय जिहड़ा से 2:27 कार्यक्रम च हुई न कने मौसम भी बड़ा प्यारा जिहड़ा से बनिया कने तुहां मौसम का भी जरूर आनंद जिहड़ा से लै दे होने न। मौसम भी समय समय अनुसार अपना जिहड़ा बदलाव है से जरूर लैंदा है कने तुहां भी मौसम का जिहड़ा आनंद है से जरूर लै दे होने न। कने अहां दे जिहड़ा श्रोता न सभी जरूर इंतजार पर होंदे न कि तिना दियां जिहड़ा फरमाइशां न से अहां तिना तक जल्दी जल्दी पहुँचान। चलदे न सुनदे न इसा प्यारी दिया फरमाइशा जो ये फरमाइशा जो आयु वे मेघनाथ जी दी कने से रहने वाले न कुते तो सारे अगर कार्यक्रम कने जुड़े होंगे ताता तो जो पता है पर फिर भी तुह तक कहाँ पहुँचाइंदे न से रहने वाले न दाढ़ी ते तिना तक कहाँ ये फरमाइश ये भजन पहुँचा देन तुह सारे भी इंजॉय करा।

0: मैं तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला दर्शो अगले जेड़ा श्रोता ने से जरूर अहां कन्ने जुड़ चुके हैं कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: हेलो नमस्कार शशि जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: हाँ जी ठीक ठाक
0: जी। तुह कुथु ते बोला दी कने तुहां दा नां की है जी?
1: मैं कांगड़े तो बोला दी, मेरा नाम राधा कश्यप है
0: जी। राधा कश्यप जी, बड़े दिनों बाद तुहां रेडियो गुंजन धर्मशाला जो याद किता जी।
1: हाँ जी, मैं कदी कदी चली जंदी हां, कदी घूमना फिरना चली जंदी।
0: जरूर जी, घूमना फिरना भी जरूरी है ना जी।
1: हाँ जी
0: जी, समय दे अनुसार हर चीज जिहड़ा है से जिंदगी च जरूरी है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। ता कांगड़े दा मौसम आज कदे आवे?
1: कांगड़े बड़ी बारिश हुई होनी
0: जी। अच्छा, बड़ी बरखा जिहड़े से हुई इस टाइम क्या आवे? इस टाइम भी लगी है बरखा की नहीं लगी?
1: इस टाइम बरखा नहीं है, हवा चल रही और ठंड बड़ी हुई है। ठंडा ठंडा मौसम हुई है
0: जी। ठंडा ठंडा मौसम जिहड़े से हुई है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। और नोई ताजी कांगड़े दी?
1: बस पुरानी है, नई ताजी
0: जी कोई नई ताजी नहीं है।
1: हाँ जी, नई ताजी हवा बड़ी तेज हवा, तूफान चली है। तूफान
0: जी, तूफान ने ते थोड़ा दिया अपना बचाव करने की जरूरत होंदी ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। ता अंबा ता जेड़ा नो है से तूफान लगाई लिया कि नहीं लगाया?
1: क्या लगाया मैं?
0: अंबा जी, अंबा दा नोआ लगाई लिया तू? हाँ
1: अंबा
0: जी जी।
1: हाँ जी हाँ जी, साढ़े लेंटे पर लगे ना अंब, बंदर खाते
0: बंदर खाई जाते।
1: हाँ जी हाँ जी, अंब तो बड़े भारे लगे ना
0: जी जी जी, क्योंकि सीजनल अनुसार हर फल जिहड़ा से अहां जो खाना भी चाहिदा कने प्रकृति दी देन है ना जी।
1: हाँ जी
0: जी जी। ता राधा कश्यप जी, आज जिहड़ा अहां कार्यक्रम च गलबात करा देन से करा देन, अगर तुहां कार्यक्रम शुरू ते सुना देंगे ता तुहां सुनी लिया?
1: नहीं, मैं ऊन ही ऑन कीता है
0: जी। अच्छा, ऊन ही अपना रेडियो सेट ऑन कीता तुहां जो? हाँ, याद जी, आई
1: मैं पहले बाजार गई, बाजार आई ता हुण
0: जी
1: आई के ऑन कीता फिर
0: जी। अच्छा, गल बात यह है कि जेड़ा हाँ दे बुजुर्ग हैं तिना कन्या हाँ कई बार होंदा ना कि अच्छा व्यवहार जेड़े से नहीं कर देना, ते दे उपर जागरूक जेड़े से जरूर करा देना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी।
1: तो बुजुर्ग तो जी करे दी नींव होंदी है एक
0: जी। अच्छा, नींव जी जी।
1: हाँ जी, बुजुर्ग ना होता घर बिलकुल ही नहीं आंदा फिर
0: जी, घरे दी रौनक ही गायब हो जाती ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी, बड़ी मतलब वो रौनक ही नहीं रहती घर बिच
0: जी। रौनक अगर घरे च चाहिदी होंदी तां बुजुर्गां दा जिहड़ा साथ है से होना बड़ा ज्यादा जरूरी है।
1: बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है
0: जी जी
1: जी।
0: तां राधा जी, आज तुहां कुंदिया गीत सुनना पसंद करगे?
1: सुनना तो कोई और है, पर हुण तुसीं बोलिया जिंदगी सोहणी है, यही लगाई दियो फिर तुसीं
0: जी। जिंदगी सोहणी है जिहड़ा टेंशन है ना तिना जो थोड़ा देर साइड रखना है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी, जरूर जिंदगी सोनी वाला गीत तुहां तक पहुंचांदे हैं जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा।
1: हाँ जी धन्यवाद जी, धन्यवाद
0: जी। ए है तुहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, तशो तां तुहां सारी कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने, कने तुहां सारी भी इस कार्यक्रम दे सफर च अहां कन्ने जुड़ी सकदे, कन्ने अहां कन्ने गल बात जिहड़े से जरूर करी सकदे। अगले जिहड़ा श्रोता न तिना कन्ने भी कर दे न गल बात। हेलो हेलो, नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी
0: जी, स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
2: जी,
0: तो हाँ, ठीक ठाक है जी। तो कुथु ते बोला दे कने तुहां दा नां की है जी?
2: मेरा नां कर्शीदा बेगम
0: जी।
2: हाँ जी
0: जी, कुथु दे रहने वाले जी?
2: कहां नौर मिलिंगा रे
0: जी। क्या हाल चाल है जी?
2: जी
0: क्या हाल चाल है जी?
2: बढ़िया बढ़िया। ठंड कही है, आज बरखा हुई है
0: जी। कितनी की बरखा हुई उस साइड?
2: बड़ी बरखा हुई, बड़ी ठंड आई था, मजा आई गया।
0: जी गर्मी ते राहत मिली है ना जी?
2: हाँ जी हाँ जी।
0: इस टाइम दा मौसम क्या बने है जी?
2: अजी
0: इस टाइम दा मौसम के दे है जी उस साइड?
2: इस टाइम ता गड़ाके लगी है ना, वो अलग ही जो है
0: जी। अच्छा,
2: बरखा लगी है थोड़ी थोड़ी।
0: जी जी जी। ता आज तू हाँ कुंदिया गीत जिड़े से सुनना पसंद करके?
2: मैं ता नाग गया गीत सुनना जी आगे।
0: जी अच्छा, इंद्रू नाग जी दा भजन सुनना है तू हाँ?
2: हाँ जी, इंद्रू नाग जी दा।
0: जी जी जरूर, जिड़ा भजन है से तुहां तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा।
2: धन्यवाद जी, धन्यवाद
0: जी। दर्शकों अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते हैं कने तो हम जो लेकर चलते हैं फरमाइश दी और सुनते हैं सा प्यारी दिया फरमाइशा जो ये फरमाइश अह तक पहुँची हो है व्हाट्सएप के माध्यम ने। तिना दा ना जिहड़ा है सभी जरूर तुह तक पहुँचाइंदे न। तिना दा ना वे प्रिया गौतम जी कने से रहने वाले न धर्मशाला ते। तिना तक कहाँ ये भजन ये फरमाइश पहुँचा देन तुह सारे भी इंजॉय करा कने ने सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पंदी।

0: अगले श्रोता जी डन से यहाँ करने फिरी ते जुड़ी चुके हैं ना कर दिन तीना करने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते मैडम। नमस्ते
0: जी। स्वागत है जी तोहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हाँ जी ठीक ठाक
0: जी। पहले तो तोहां कुथु दे रहने वाले न कने अपना जेड़ा नाम है सभी जरूर दसी दिया जी।
1: असल मैं तहसील बाबा बड़ोज रहने आया जसाई पिंड पौंदा हाँ
0: जी जी।
1: मैं सतीश कुमार मेरा नाम
0: जी। तो सतीश जी आज तुहां क्या काम काज लगे या क्या करा दे?
1: अज बरखा पई है पहले छलियां दंदाई दी लगी देना से बरखा से कम खराब हुई है ना
0: जी। अच्छा छलियां जिड़ा ने से लगाई थी तो हां।
1: हां जी
0: जी। तो फसल ठीक है चली हो की ठीक ठाक है? जी। अच्छा 18, 19, 20, 21 तक जिड़े से तुहां हिमानी चुमंडा लंगर लगाना है?
1: हां जी
0: जी।
1: जरूर श्रोता दर्शन भी हो कोई बड़ी भारी संख्या च ऊपर होना जरूर लंगर खाना करना माता दर्शन जरूर करने।
0: जी जी दर्शन तो करने ही पोने ना जी। अगर हम पूरी श्रद्धा भाव ने कोई भी काम कर दे ना जी जरूर ते सफलता मिलती है ना जी। कने जितनी भी श्रोता है न सभी जरूर हाँ जो सुना दे होने न कने फेसबुक जेड़ा लाइव है सभी जरूर चले आए था तीस च भी श्रोता जेड़े न जुड़ा जुड़े हो न कने सभी सुना दे होने न जी।
1: हाँ जी
0: जी जी। ता 18, 19, 20, 21 जो जेड़े से तो हाँ हिमानी चुमंडा लंगर लगाना है ना जी।
1: हाँ जी
0: जी जी। ता सतीश जी आज यहाँ जिड़ा गल बात करा देना से करा देना तुहां अगर गल बात मेरी सुनी ली होनी ता तुहां जो पता होना कि क्या गल बात करा देना।
1: बस मैं हुण सेट ऑन कीता है कने पहला प्रोग्राम पहले मैंने फोन कर लंदा
0: जी। अच्छा ऊनी जिड़े से तुहां रेडियो सेट ऑन कीता था?
1: हां जी हां जी
0: जी। ता आज जिड़ा हां खास दिन बना देना से बना देना विश्व बुजुर्ग दिवस यानी कि बुजुर्गों कन्ने जिड़ा अच्छा व्यवहार नहीं होंदा है तिदे प्रति जागरूक करना तिना दे अधिकारा प्रति जागरूक करना जी तिदे उपर आहां गलबात जिड़े से करा देना आज।
1: हां जी
0: जी। तो तुहें क्या लगदा बुजुर्गों दा सम्मान करना हां वास्ते कितना ज्यादा जरूरी है?
1: देखो जी बुजुर्ग हैं तो सब कुछ है
0: जी।
1: जिन्हें बुजुर्ग नहीं ना उनसे ना पता लग गया बुजुर्ग की क्या कमी है ना
0: जी जी।
1: जिन्हें सह नाराजगी करा दे बेहतर चला है तेने बड़ी बड़ी बेवकूफी है
0: जी। सही है ना कि जालू इंसान जड़े से इस जिंदगी ते चली आंदा है तो हाँ पछतावा जड़े से शुरू करी दे ना जी।
1: पर जालू उस टाइम पे पछतावा
0: जी जी
1: उस टाइम तो बाद जाने के बाद तो पछतावा करने की कोई जरूरत नहीं है कल जिंदे तल तो कुछ करना नहीं
0: जी।
1: बस तो चल क्यों है चौपड़ी खोंगे कोई फायदा नहीं ना
0: जी। कोई फायदा नहीं है ना जी क्योंकि इंसान जी जी।
1: हां जी बुजुर्ग ना बड़े ठंडे पेड़े छां है
0: जी।
1: ऐसा जितने ज्यादा देर रहे उतना बढ़िया
0: जी बड़ा ज्यादा जी। क्योंकि अगर एक परिवार दी यहां गल करिए ना जी तो परिवार च बुजुर्गों का होना बड़ा ज्यादा जरूरी है।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल डर बड़ा जरूरी है घर जे अंदर जो बुजुर्ग का डर होंगे घर और ना डराई लेंगे बुजुर्ग तो गाली पानी है ना वो डर है डुकर है
0: जी।
1: घर की संभाल भी तेना रखते ही है सारी
0: जी जी जी। ता आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करिए जी।
1: सिमिलर नहीं बसना तो पार्ट टू नहीं बसना जाई बसना चंबा जरूर
0: जी जरूर। ये गीत फरमाइश तुह तक पहुंचान दें जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा।
1: धन्यवाद जी बिल्कुल जी
0: जी। ये है तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुहा सारी कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। इसी कन्ने अहां कार्यक्रम दे सफर जो जरूर अग्गे बढ़ांदे न, कन्ने अज अहां जेड़ा कार्यक्रम च गलबात करा दे न, से करा दे न कि बुजुर्गां दा मान सम्मान करना अहां वास्ते कितना ज़्यादा जरूरी है। हर दिन अहां ई जेड़े से बोलदे न कि बुजुर्ग जेड़ा न सहां दी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करदे न। अहां दे पेरेंट्स अहां जो हमेशा अच्छे संस्कार, अच्छा जेड़ा व्यवहार है से दिंदे न, पर अहां अच्छे जेड़ा संस्कार हैं से कुथु लगा देन, या किस प्रकार अपने जिंदगी दे सफर जो अपने कन्ने इंजॉय करा देन, से जरूर थोड़ा देर सोच विचार करा, कन्ने अगले जेड़ा श्रोता न अहां तिना कन्ने कर देन गल बात। हेलो
2: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
2: धन्यवाद जी। हां जी ठीक ठाक
0: जी। तुहां अपना प्यारा दिया ना दसी दिया, कने कुथु दे रहने वाले न जरूर दसी दिया जी।
2: मैं अंजू बोल रही चमंडा दे
0: जी। अंजू जी, क्या हाल चाल है चमंडा वाले दे?
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम ठंडा हुई है मौसम वगैरह भी
0: जी। तब मौसम दा पूरा जिड़ा इंजॉय ऐसे तोहा लै देना जी।
2: जी मैडम जी।
0: जी जी, कने कार्यक्रम दा भी इंजॉय लै देना कि नहीं लै देना?
2: हाँ, नहीं नहीं, ये तो चल आएगा, रेडियो तो मेरा सवेरे ते चालू रहंदा
0: जी। अच्छा, रेडियो कने दिल जरूर लगाया तोहा ना जी?
2: बस रेडियो चालू, काम चालू बस।
0: जी, रेडियो दा वैसा फायदा बड़ा है ना जी, अपने काम
2: बड़ा टाइम बर्बाद हो
0: जी,
2: टाइम भी बर्बाद नहीं होता, काम भी अपना लग गया रहता, मुझे नहीं करें, दिल भी लग गया
0: रहता। जी जी, दिल भी लग गया रहता, कने काम भी जेड़ा है से जरूर चले रहता ना जी।
2: फालतू कुछ दी मतलब बहना नहीं, चुगली निंदिया चर्चा नहीं बस।
0: जी जी,
2: सबसे अच्छे काम है
0: जी, सबसे अच्छा जी। कने कुछ अच्छा भी यहाँ जेड़ा है से सीख दे ना, कने कुछ
2: सीख दे। हां जी, अच्छियां गल्लां भी सीखने मिल दी है ना
0: जी, कने अपनी पसंद का गीत भी जरूर सुनी लेंदे न।
2: बिल्कुल जी बिल्कुल, सब ते ज्यादा ते एंजॉय दिस च कर दे।
0: जी, जालु गीत तो हां तक पुजी आंदा, तालु चेहरे पर जेड़ा स्माइल है से जरूर तो हंदे पर दिखने जो मिलती है।
2: हां बेताब रहंदे कि हां ना कल उदी जाओ, है कल उदी जाओ।
0: जी जी, जरूर ता अपनी फरमाइश दसी दिया जी, कुंडिया गीत तो हां सुनने आज।
2: ओ नहीं है, राम जप ले नवाणी जिंदे औखे वेले काम आवणा।
0: जी, राम जप ले जरूर जी, राम का जपना ही पोना।
2: और क्या, इसके अलावा कुछ नहीं है मैडम जी, भगवान जी, है तो सब कुछ है।
0: सब कुछ है ना जी,
2: बाकी सब धोखा है।
0: सब कुछ धोखा है, मोह माया है।
2: मोह माया धोखा ही है, इसी किस्म ना।
0: जी जी,
2: पैसा भी है।
0: जी जी, तो जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हंदा।
2: हां जी, धन्यवाद जी।
0: दर्शकों, तुहां सारी कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने, तुहां सारी भी इस कार्यक्रम दे सफर जो इंजॉय करी सकदे, सफर जो और भी सुहाना बनांदे न, पर कार्यक्रम दे सफर जो फ्री ते सुनदे न एक प्यारा दिया गीत, तुहां सारे भी इस गीत जो जरूर इंजॉय करा।

ये सारियां दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना अपने रेडियो तो शशि कन्ने। इस गीत दा जिहड़ा इंजॉय है सभी जरूर तुहां लै देना, कन्ने मेरी गलबात दा इंजॉय भी जरूर तुहां लै देना। इस गीत की फरमाइश हां जो आई हुए कांगड़े ते तिना दा नाम है पवना जी। इसी कन्ने इस गीत की फरमाइश हां जो कांगड़े ते ही आई हुए कन्ने तिना दा नाम है राधा कश्यप जी। तिना तक हां ये गीत ये फरमाइश पहुंचा देन। कन्ने जरूर एक तुहां जो जानकारी भी यहां देनी है, क्योंकि जानकारियां जेड़ा तुहां तक पहुंचाना भी जरूरी है। कल्ले भी यानी कि जेड़ा 16 तारीख भी यहाँ कल करिए जिहड़ा लाइट का जिहड़ा कट है से जरूर कल है, यानी कि 9:30 ते जल तक कार्य समाप्ति तक जिहड़ा से लाइट का कट जिहड़ा से कुथू रहना है से भी तुहां जरूर सुनी लिया। 11 KV दे अंतर्गत जिहड़ा खनियारा दे अंतर्गत जितने भी जिहड़ा गाँव हैं से उनके नीदे बिजली का जिहड़ा कट है से जरूर रहना है। सिद्धपुर एजुकेशन बोर्ड कलोनी नोट बलिंगा मोहली खड़ोता स्टिल्लू चकवन जिहड़ा बाजार है नड्डी सोकनी का कोटा तिथु भी जिहड़ा से बिजली का जिहड़ा कट है से कल रहना है 9:30 ते जल तक कार्य समाप्ति तक जिहड़ा से बिजली का कट जिहड़ा से कल रहना है। तो जरूर तुहां ये जिहड़ा जानकारी है से इंजॉय यानी कि सुनी ले आनी है। कन्ने तुहां सारी कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। तो कार्यक्रम का जिहड़ा सफर है से तुहां तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक। फिर ते अहां इस सफर च अगे बढ़ना है कन्ने अगली जिहड़ा फरमाइश है जिहड़ा अगले श्रोता न तिना तक पहुँचाते न तुहां सारे भी इस फरमाइश जो इंजॉय करा। ये फरमाइश अहां जो आई हुए सतीश जी दी तिना तक अहां ये फरमाइश पहुँचा देन। कन्ने तुहां इस कार्यक्रम जो भी इंजॉय करा देन। कन्ने मौसम दा जिहड़ा इंजॉय है सभी जरूर तुहां लै देन। तो सुन देन इस प्यारे दे गीत जो प्यारी दी आ फरमाइशा जो तुहां सारी इन्हें ही सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेना तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी है। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: यार, इतनी गर्मी में फंक्शन कौन रखता है? ऊपर से तुम्हारी साइड से इतने सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, आधे तो ऐसे हैं जिन्हें मैं पहली बार मिलने वाली हूँ। मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन सबसे कैसे डील करूँ। लो, ऊपर से ये फाउंडेशन खत्म हो गया, अब मैं अपने मुंह पे क्या लगा के जाऊँ?
7: ताला।
6: क्या?
7: अरे ताला भी खराब हो गया है। एक काम करते हैं, मार्केट चलते हैं, तुम्हारा मेकअप भी ले लेते हैं और नया ताला भी खरीद लेते हैं।
6: हाँ ठीक है, चलो मार्केट चलते हैं।
7: चलो।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।
1: चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल। पिछले 12 सालों में 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी है। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: फंक्शन कौन रखता है? ऊपर से तुम्हारी साइड से इतने सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, आधे तो ऐसे हैं जिन्हें मैं पहली बार मिलने वाली हूँ। मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन सब से कैसे डील करूँ। लो, ऊपर से ये फाउंडेशन खत्म हो गया, अब मैं अपने मुंह पे क्या लगा के जाऊँ?
7: ताला।
6: क्या?
7: अरे ताला भी खराब हो गया है। एक काम करते हैं, मार्केट चलते हैं, तुम्हारा मेकअप भी ले लेते हैं और नया ताला भी खरीद लेते हैं।
6: हाँ ठीक है, चलो मार्केट चलते हैं।
7: चलो।

हाँ जी महाराज नमस्कार, क्या हाल चाल नतुन दे सब्बीर है। नमस्ते, क्या हाल चाल नतुन दे सब्बीर है बीन। हाँ बिल्कुल, फेसबुक वे माध्यम तो है लाइव बुझ गए जुड़ गए, और रेडियो रे माध्यम तो ता लाइव है हिन हिन्ना सदा बहार थो इन ताऊ सचिन कपूर एफएम बैंड 91.2 MHz पर तो सब ये ट्यून कर रहे इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर आऊँ सचिन कपूर हाजिर बुझगो तुम सभी रे रेडियो सेट मा रेडी गुंजन धर्मशाला मन। कैसे तो है सब उम्मीद करनो और होप सो कि तो है सब खरे भुने बांके भुने अपने अपने घरे के न सो थोड़े करी मस्त भुने तंदुरुस्त भुने न सेहतमंद भुने न हमेशा बल देन श्रोतो है कि सेहतमंद रहने किया सो बहुत ज़्यादा जरूरी है लाइफ में श्रोतों को, जो कि इतनी था कि श्रोतो सो लाइफ अच्छी चल देना सेहत खरी बोले तो सब कुछ कर सकते न हर एक चीज़ अचीव कर सकते हैं श्रोतों। अगर सेहत ही बुरी रह ले सेहत ही ठीक न रह ले तो फिर यह है कुछ ना कर सकते ना। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी होने वाले रहे जितने भी इनके वीडियो बन रहे वीडियो रहे श्रोता हिन त्यारा सभी रहो तहे दिल तो स्वागत करनो। फेसबुक रहे माध्यम तो जितने भी श्रोता असु हेरना लगे अपने इस कार्यक्रम जो गदयाली कार्यक्रम जो हेरना और होना लगे त्यारा भी आऊँ तहे दिल तो स्वागत करनो हाँ अभिनंदन करनो हाँ आऊँ तुम अपना नाचीज सचिन कपूर हा और फेसबुक रहे माध्यम तो लाइव हा। फिलहाल तो मौसम रही गल सभी पहले तुझे पता बंदे है श्रोताओं मौसम इस वक्त किया सो बड़ा हसीना बड़ा प्यारा है और बड़ा ही अच्छा मौसम है इस समय धर्मशाला रहा जी बिल्कुल जड़ी कजू की निचले इलाके अंदर अगर है गल करिए निचली सिटी अंदर शोतो तो उस साइड के अनुसार छुट्टी भी हो रही है ना ताई तो ये रुकर दे उन्हें कि धर्मशाला में थोड़ा करे ट्रैफिक किया सो ज़्यादा नज़रें छुकरदा है जो कि अदर स्टेट में जाया है हरियाणा री गल करना दिल्ली री गल करना पंजाब री गल करना है ना इस किनारे के ना इन स्टेट में क्या ना सो छुट्टी भी हो रही ना ठेर ठेर थोड़ा करे ट्रैफिक किया सो ज़्यादा है धर्मशाला मंच हो तो आनंद लियो कर दिन सब अदर स्टेट रे मनो भी हेड़ी इच करे कजू की इतना प्यारा मौसम हेड़ी रे हवाएं इतनी प्यारी चल दिन है ना मौसम इतना प्यारा था नेचुरल दे गल आनंद तो सब भी लेना ही लेना शो तो मज़ा तो लेना लेना है बरखरा हल्की हल्की बूंदाबांदी की असो लगातार भुचू कर दे है ब्यागा वह आज मौसम की असो

0: सो थोड़ा करी बादल के न सो छू रही थी है। और इस समय अगर हम गल करूँ श्रोताओं कि इस समय धर्मशाला रा मौसम एग्जैक्टली गल करूँ कि एग्जैक्टली की है श्रोताओं करके नगर का इन फेसबुक के माध्यम तो भी हेलो हाई इच्छू कर दी ना सभी जो नमस्ते जी बिल्कुल लाइव है इस समय है, वीडियो सेट में तो है सब श्रोतागण हूँ कर देना और कॉल जरूर कर सकते हैं जनाब 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर नंबर आख मौके फिर आऊँ शेयर करनो आ साझा करनो आ 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर तो है सब श्रोता आओगे जुड़ी सकते हैं अपना पसंदीदा गीत क्या सो हो सकते हैं। तो इस वक्त 18 डिग्री सेल्सियस रहे आसपास किया सो मौसम है श्रोताओं जी बिल्कुल 18 डिग्री रहे आसपास किया सो मौसम है। नमी की गल करिए श्रोताओं तो नमी इस समय किया सो 83% हाँ इन धर्मशाला मंच तो मौसम तो वाकई में कमाल है बा कमाल मौसम रा मिजाज क्या बात है। तइये जी जानकारी रा पिटारा बिल्कुल असू ये खोल दे चलना हाँ श्रोतों और तुसों की रूबरू असू भूंदे चलना हाँ धीरे धीरे तो सब वीडियो रे माध्यम तो असू की जुड़ सकते हैं जी रोज़ाना जुड़ दे 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर कॉल करे करे नंबर आग मौके फिर है शेयर कर देन साझा कर देन 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर तो है सब श्रोता होगी जुड़ सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत की असो हो सकते हैं अपने क्षेत्र की जानकारी असू होगी जरूर साझा कर सकते हैं। तो चल दें थोड़ा करी हगू जानकारी रा पिटारा धीरे धीरे खोल दें तो होप सो कि इंदे बहुत सारे श्रोतागण के न सो खनियारा रहे बिन बहुत सारे श्रोतागण के न सो नॉर बिलिंग रहे भी हिन है ना बहुत सारे श्रोतागण के ना सभी जगह रहे ता अक सभी वास्ते अक विशेष जानकारी देनी हम जो तुसु तक जरूर असु साझा करनी है श्रोतों कि दोते कि सो लाइट कड़ी कड़ी नहीं है श्रोतों से जानकारी तुसु तक असु पहुँचानी है इतों बाद और भी बहुत सारी जानकारी जो तुसु तक असु पहुँचानी है ता दुत्ते जो लाइट हा श्रोतों सो कड़ी कड़ी नहीं है ज़रा ज़रूर इन दे श्रोतागण के सो ध्यान दीन दुत्ते 16 तरीका जो लाइट किया श्रोतों सो भैग 9:30 बजे थो लेकर संजा जी तक कार्य समाप्त न बुंदा जी तक काम किया सो बिजली आले वा समाप्त न बुंदा तीन तक दुत्ते कस कस इलाके अंदर लाइट ने सिद्धपुर में लाइट ने एजुकेशन बोर्ड कलोनी में लाइट ने नौरबलिंगा में लाइट ने मोहली मोली में लाइट ने खड़ोता लाइट ने टिल्लू माने जी खनियारा बाजार माने नड्डी माने सोकनी दा कोट माने और दिनांक 17 तारीख जो भैगा 9:30 बजे थो लेकर कार्य समाप्ति तक किया सो श्रोताओं या फिर मौसम खराब बुलाता मौसम खराब बुला था जी आज भी खराब है ना दुत्ते भी ना रहे होता एक इसी जो कि असो आगू बढ़ाई सकते हैं इस कार्यक्रम जो बिजली विभाग वाले बहरहाल तो है चल दिन थोड़े करी आगू और इन पहले श्रोता असु की कनेक्ट वो छूरे पूछ दिन कौन बल दे और कड़ी थम बल दे नमस्ते जी कार्यक्रम में स्वागत है।
1: हेलो नमस्ते जी।
0: हेलो नमस्ते जी नमस्ते
1: कैसे हो।
0: हम बहुत बढ़िया जी तो है कि नहीं तो है दस से पहले कौन बल्लू देन और कड़ी थम बल्लू कर देन
1: मैं साक्षी बोल रही हूँ
0: साक्षी जी
1: खनियारा से।
0: अच्छा साक्षी जी खनियारा थम बल्लू कर देन ना तो दुत्ते लाइट नहीं है तुम दिखना रही ठीक है।
1: हाँ जी
0: हाँ जी तो जरूर सब भी उदा सीना कि जो बिजली थो रिलेटेड संबंधित काम ने सो आज कर लिया दुत्ते लाइट ना बोने
1: हाँ जी
0: साक्षी जी कौन दिन की थोड़ा पसंद कर ले
1: मायनी मेरी ये शिमले दुकानी
0: क्या बात है चंबा कितनी की दूर
1: पहला गाना मेरा ही आना चाहिए
0: बिल्कुल बिल्कुल जनाब पहला गीत तुंदा ही बुना लेकिन थोड़ा इंदा जो कार्यक्रम रा पैटर्न है तस हिसाब हो गया सो चलना पंदा पहले आगाज कर ले फिर तातो बात तुंदी फरमाइश रा दौर गया सो जरूर पूरा कर ले ठीक है साक्षी जी इजाजत दिया नमस्ते
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद जी तथो सब श्रोता भी जुड़ी सकते हैं जी बिल्कुल 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत होनी सकते हैं अपने अपने क्षेत्र की जानकारी किया सो वो के साझा कर सकते हैं। यह गल्ला खास ख्याल रहे श्रोताओं की जानकारी किया सो रेडियो मंच दसने लाइक जरूर हुआ। जानकारी रेडियो मंच साझा करने लायक जरूर हुआ। बहरहाल इन अगले श्रोता सोगी कनेक्टेड हैं, जरूर कनेक्ट कर दे हैं। नमस्ते जी
2: सचिन जी। नमस्कार।

श्रोता एफ एम एंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी, जो कि सचिन कपूर, क्या यही प्यार है। हाँ, यही प्यार है। ये प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना श्रोताओं। तो आइए जी, बताते हैं अब कल कहाँ कहाँ लाइट नहीं है, ज़रा गौर फरमाइएगा कि श्रोताओं कल कहाँ कहाँ लाइट नहीं है। जी बिल्कुल, कल है 16 तारीख, और 16 तारीख को सुबह 9:30 बजे से लेकर जब तक कार्य समाप्त नहीं होता तब तक खनियारा फीडर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सिद्धपुर एजुकेशन बोर्ड कॉलोनी नॉर्बलिंगा मोहली खड़ोता टिल्लू खनियारा बाज़ार नड्डी सोकनी द कोट, यहाँ पर जो है वो लाइट नहीं है। जी बिल्कुल, इन एरिया में जो है वो लाइट नहीं है। 17 तारीख को सुबह 9:30 बजे से लेकर जब तक कार्य समाप्त नहीं होता, कौन कौन से इलाके हैं जहां लाइट नहीं होगी? सिद्धपुर, फतेहपुर, सुक्कड़, लोहर सुक्कड़, सेक्रेड हार्ट, त्रिलोकीनाथ और इन जगहों पर, आदि क्षेत्रों पर जो है वो लाइट नहीं रहेगी। मौसम ख़राब हुआ या फिर कुछ भी मौसम ख़राब होता है तो ये कार्य जो है वो अगले दिन किया जाएगा। 16 और 17 को जहाँ जहाँ लाइट नहीं है, हमने आप तक ये जानकारी पहुँचा दी है। आप सभी अब यूं ही बने रहिएगा आपके अपने वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ, गूंज अपने बन की और गूंज प्यारे प्यारे श्रोताओं की। तो श्रोताओं, लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर, मैं तेरे इश्क में मर न जाऊंगी। हाँ बिल्कुल, चलिए अब तो कहाँ ही मरते हैं इश्क में, पहले मरते थे इश्क में। तो लेके चलते हैं आप सभी को इस गीत की ओर श्रोताओं। लोफर मूवी से दिया गया ये गीत है और लता जी की आवाज़ में।

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला। 7:01 हुए हैं और अब वक्त हो गया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में समाचारों का।
1: खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
2: श्री रॉबर्ट विट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट विट्सो के साथ उनकी मुलाकात भारत स्लोवाकिया की दोस्ती के लिए बेहद खास पल है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में ऑटोमोबाइल, रेलवे, उन्नत विनिर्माण और हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
3: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
2: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले साल की तुलना में 46% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ और उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 पर दर्ज हुआ। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
4: श्रोतो FM 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना RJ सचिन कपूर। चलिए चलते हैं श्रोतों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अंतराल के बाद, समाचारों के बाद, अब मुझे पता है हमारे श्रोतों का थोड़ा सा मूड है कि एक गीत की ओर लेके जाए हमें सचिन कपूर। तो अपने श्रोताओं को हम नाराज़ नहीं करेंगे और लेके चलेंगे गीत की ओर, मेरे महबूब कयामत होगी। बिल्कुल किशोर कुमार जी की आवाज़ में ये बेहतरीन सा गीत आप सभी के रेडियो सेट पर।

श्रोतो FM 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वीडियो गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना RJ वीडियो जो कि सचिन कपूर। चलिए जी, जानकारियों का पिटारा खोलते हैं श्रोतो। आप सभी बने हुए इस समय जुड़े हुए हैं वेड़ी गुंजन की गूंज के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं सचिन कपूर के साथ गुड इवनिंग धर्मशाला। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। होप सो आप सभी इंजॉय कर रहे होंगे इस प्यारे से कार्यक्रम को आपके अपने वेडियो सेट पर रेडी गुंजन धर्मशाला में। तो चलिए चलते हैं कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और अगली कुछ जानकारियों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधान एवं उप प्रधान को एंटी चिट्टा शपथ दिलाई तथा उनसे चिट्टे के खिलाफ अभियान में सक्रियता से सहभागिता सुनिश्चित करते हुए चिट्टा मुक्त पंचायत व समाज बनाने का आह्वान किया। श्रोताओं, उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि पंचायत शासन व जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है और उन्हें पूर्ण आशा है कि वह विकास, जनसेवा और सरकार की योजनाओं का लाभ आम जन तक जो है वो ज़रूर पहुंचाएंगे और आम जन तक पहुंचाने में प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। उन्होंने पंचायत प्रधानों से आग्रह किया है कि वह समाज व खेल, शिक्षा, संस्कृति व सकारात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देकर युवाओं को नशे से दूर रखने में अपना योगदान दें। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू ने कहा है कि प्रदेश ने समाज के हर वर्ग के कल्याण व समग्र विकास के लिए अनेक महत्वाकांक्षी पहल व योजनाएं की हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने जो हैं वो आ रहे हैं, जिनके पॉजिटिव परिणाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। श्रोताओं, उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रीन हिमाचल, शिक्षित हिमाचल, स्वस्थ हिमाचल, रोजगार वित्तीय, नशा निवारण, कर्मचारी कल्याण सहित अन्य अनेक क्षेत्रों में जो है वो दूरदर्शी सोच के साथ कार्य किया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जिला के नव निर्वाचित पंचायत प्रधान और उप प्रधान को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्रोताओं, इसी तरह से जानकारियों का पिटारा जो है वो यूं ही खुलता रहेगा, गीत संगीत भी यूं ही चलते रहेंगे। आप सभी बने हुए इस समय FM 91.2 MHz पर। तो चलिए जी, अब जो घर का मुखिया होते हैं यानी कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो हिमाचल प्रदेश के मतलब जो प्रधान और उप प्रधान हैं, उन जितने भी जहाँ भी पंचायत बनी है उन सभी को जो है उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। उन्होंने गाइडलाइन जो है वो दी है कि इस प्रकार से जो है वो काम होना चाहिए। आम जनता के पास जो है वो सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं वो आम जनता तक जो है वो ज़रूर पहुँचनी चाहिए। तो अब ये कार्य जो है वो जो प्रधान हैं और जो प्रधान है उनका बन जाता है कि हर घर तक जो है वो सरकार की स्कीमें जो हैं वो पहुंचनी चाहिए। मात्र अब प्रधानों और उप प्रधानों का ये काम नहीं है कि आपने एक बार हाथ जोड़कर जो है वो वोट मांग लिए हैं और अब जो है वो आप दुकानों में बैठेंगे या अपने घर में जो हैं वो रहेंगे, नहीं। आपको अब जो है वो मुझे ये लगता है कि प्राथमिकता अपने गाँव के लिए होनी चाहिए। जिस प्रकार से आपने चुनावी दौर में जो है वो आपने दिन रात एक किया है, ये आप सभी बाखूबी जानते हैं कि आप सभी ने दिन रात उस समय जो है वो एक किया है, अपने सारे जितना भी आपका मतलब चाहे वो आप जोर आजमा लीजिए, चाहे वो आप सोच आजमा लीजिए, जितना भी हो सकता है वो आपने एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन अब भी वही एफर्ट्स जो है वो ज़रूर चाहिए। ये ना हो कि 5 साल का वादा करके आप लास्ट के मतलब चार साल यूं ही बीत जाएं और 5वें साल आप मेहनत करने लगे, फिर से लोगों को खुश करने लगे। तो जनता जो है वो अब वैसी भोली वाली जनता नहीं है, जनता जो है वो अब पढ़ी लिखी भी है, समझदार भी है, सूझबूझ के साथ जो है वो निर्णय भी लेती है, है ना। और हाँ, ये बहुत सा देखा गया है, मुझे बहुत लोगों ने ये कहा भी कि इस तरह से जो है वो हमारे गांव में भी हुआ है, हमारे में भी हुआ है, योल टीका चतैड़ में भी कुछ इस प्रकार के कार्य जो है वो हुए हैं। कार्य क्या है श्रोताओं, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ ये कार्य कि लोगों तक कुछ एक समुदाय के लोगों तक जो है वो मिठाई बांटी गई है।
कुछ एक घरों तक जो है वो मिठाई गई है, कुछ एक को जो है वो अपने घरों में जो है वो इनविटेशन दिया है धाम का, उनकी सेवा की है। वो चाहे सेवा फिर आप सभी बखूबी जानते हैं कि किस प्रकार से की जाती है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस पर हल्की सी टिप्पणी मैं ये करूँगा कि अब वो जनता के प्रतिनिधि है ना, अब वो जीत चुके हैं, तो अब वो जिन्होंने ने वोट नहीं भी डाला वो उनके भी प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने डाला उनके तो है ही हैं, है ना। तो अब इस तरह का ये जो दौर चला था जीतने के बाद, ये तो और कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि आप तो बन चुके हैं, आप प्रतिनिधि, आप प्रधान हैं, आप उप प्रधान हैं, फिर आप मात्र

श्रोतों एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे सचिन कपूर। आयुषतों कार्यक्रम को आगे लेके चलते हैं। जानकारियों का पिटारा यूं ही खुलता रहेगा, गीत संगीत का पिटारा यूं ही चलता रहेगा श्रोतों, और लेके चलते हैं आप सभी को इस खास जानकारी की ओर। चंबा में नहाने के लिए रावी नदी में उतरा युवक और बह गया, यह हम बरसों से सुनते आ रहे हैं श्रोताओं, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार की गलतियां जो है वो हम लोग हर वर्ष करते हैं, हर रोज करते हैं। शहर के बालू कस्बे के समीप रावी नदी में नहाते हुए अचानक पांव फिसलने के कारण तेज बहाव में बहने से युवक की मौत हो गई श्रोतों। मृतक की पहचान जो है वो अमित कुमार पुत्र दलीप कुमार वासी मोहल्ला चंबा शहर के तौर पर की जा रही है श्रोतों। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, नहाते नहाते जो है इनके कह रहे हैं कि पांव फिसल गया, जिसकी वजह से ये रावी नदी के उस चपेट में आ गए जहाँ पे पानी का जो प्रेशर था वो ज़्यादा था श्रोताओं। और स्कूल के पास जो है वो शव बरामद हुआ श्रोताओं। अचानक पांव फिसलने के कारण अमित कुमार नदी के तेज बहाव में बहकर लापता हो गया। परिवार के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे। सूचना पाते ही पुलिस व दमकल विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों के सहयोग से रावी नदी में बहे अमित कुमार की तलाश आरम्भ कर दी श्रोताओं। और कुछ ही समीप के बाद कुछ ही देर बाद जो है वो शव बरामद कर लिया श्रोताओं। तो चलिए कार्यक्रम हमें अब वक्त हो गया है श्रोताओं, क्योंकि समय हो चुका है 7:30 और अब वक्त हो चुका है कार्यक्रम में एक छोटे से अंतराल का। आप सभी यूं ही बने रहिए, यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ वेड़ी गुंजन की गूंज के साथ, और मैं कहता हूँ इसी गूंज के साथ

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी है। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: इतनी गर्मी में फंक्शन कौन रखता है? ऊपर से तुम्हारी साइड से इतने सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, आधे तो ऐसे हैं जिन्हें पहली बार मिलने वाली हूँ। मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं उन सबसे कैसे डील करूँ। लो, ऊपर से ये फाउंडेशन खत्म हो गया, अब मैं अपने मुंह पे क्या लगा के जाऊँ?
7: ताला।
6: क्या?
7: अरे ताला भी खराब हो गया है। काम करते हैं, मार्केट चलते हैं, तुम्हारा मेकअप भी ले लेते हैं और नया ताला भी खरीद लेते हैं।
6: हाँ ठीक है, चलो मार्केट चलते हैं।
7: चलो।

तो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो आइए आशोतो, क्योंकि जिंदगी जो है वो बड़ी अनमोल है, बड़ी प्यारी है श्रोतो, और जिंदगी की तलाश में जो है वो हम सभी अच्छी ज़िंदगी की तलाश में जो है वो हम सभी रहते हैं श्रोतो। ये गीत आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे, साथ ही मूवी से लिया गया ये गीत है कि ज़िंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, कुमार शानू की आवाज़ में ये गीत है श्रोतो। और ये गीत तब गुनगुनाया गया है, ये फिल्म आपने देखी होगी साथी, जब वो बिल्कुल नशे की इस हीरोइन की चिट्टे की चपेट में होता है, उसे दर दर पर पुलिस ढूंढती है और आखिर में उसका एक दोस्त जो है वो उसको बार बार समझाता था, बार बार उसे अच्छी गाइडलाइन देता था, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी को तबाह किया। इसलिए गीत गुनगुनाया गया है इस फिल्म में कि ज़िंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, है ना जी। चलिए इस गीत को सुनने से पहले आप तक कुछ एक विशेष और ज़रूरी जानकारियां जो है वो पहुंचा लेते हैं श्रोताओं। अब वैश्विक समस्याओं का समाधान दे रहा है भारत, ओमान तट के पास डूबा भारतीय जहाज श्रोताओं। जी बिल्कुल, 14 भारतीय क्रू मेंबर थे सवार श्रोताओं, सभी सुरक्षित हैं। लेकिन इसी के साथ साथ श्रोताओं आपको बताना चाहते हैं, हिमाचल में ओपीएस से कोई भी समझौता सहन नहीं होगा, एक विषय में रह गए कम अंक तो एचपीयू देगा अधिकतम 5 तक ग्रेस मार्क्स का लाभ श्रोताओं। जी बिल्कुल, बीपीएल सूची में चयन के लिए 8वां चरण जो है वो शुरू हो चुका है। रिज मैदान में 21 को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। जनगणना ड्यूटी पर प्रशासन ने बदले निर्देश, स्कूल समय पर ही करेंगे कार्य। भारतीय सेना ने तलवार ले जाने की अनिवार्यता खत्म की शब्दों, रॉयल जैसे शब्दों को भी हटाया। जल शक्ति विभाग में भी जो है वो AI का उपयोग अब किया जाएगा, काम में गुणवत्ता पारदर्शी सुनिश्चित करने के लिए फैसला लिया गया श्रोताओं। आम लोगों तक न्याय की पहुंच बेहतर होगी, धर्मशाला मनाली में बने शिमला जैसे सील्ड रोड। यदि विशेष जानकारी श्रोताओं, अब आपको लेके चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर, बने रहेगा आरजे सचिन कपूर के साथ और इस गीत को बिल्कुल महसूस कीजिएगा। गीत हमारे यूथ के लिए है जो भी सूखे नशे की चपेट में इस समय है, उनके लिए कि वाकई में जिंदगी बहुत पास है, जिंदगी बहुत अच्छी है, जिंदगी बहुत हसीन है, बशर्ते आप ये सूखे नशे से दूर रहें।

0: शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला। और आइए श्रोतो, अब वक्त हो गया है वेडी गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों का।
1: प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
2: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के 11 जिलों में नव निर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों ने ली शपथ। कांगड़ा जिले में 18 जून को होगा समारोह। मुख्यमंत्री ने जन प्रतिनिधियों से ग्राम पंचायतों व समाज को चिट्टा मुक्त बनाने का किया आह्वान। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने तकनीक और विधिक जागरूकता के माध्यम से न्याय को जन जन तक पहुँचाने पर दिया बल। आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए आज प्रदेश भर में किया गया मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन। और प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण कल से होगा शुरू। पहले चरण में मकानों की गणना का होगा कार्य। अब समाचार विस्तार से। कांगड़ा जिला को छोड़कर प्रदेश के सभी 11 जिलों में आज ग्राम पंचायतों के नव निर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाई गई। कांगड़ा जिले में ये समारोह 18 जून को प्रस्तावित है। शिमला में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जन प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विशेष रूप से मौजूद रहे। समारोह में मुख्यमंत्री ने जन प्रतिनिधियों को एंटी चिट्टा की शपथ दिलाते हुए उनसे चिट्टा मुक्त पंचायत व समाज बनाने का आह्वान किया।
4: चिट्टा को हम जन से हो जन भागीदारी का एक स्वरूप दे चुके हैं। इसका पहला चरण खत्म हो चुका, दूसरा चरण में अभी डिप्टी कमिश्नर, एसपी, एडीएम सभी अधिकारी और कर्मचारी जाकर स्कूलों में बच्चों को, युवाओं को चिट्टे के प्रति जागरूक करेंगे।
3: मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि नव निर्वाचित प्रधान व उप प्रधान विकास, जनसेवा और सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। प्रदेश के अन्य जिलों में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाई। चंबा में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने शपथ समारोह में उम्मीद जताई कि पंचायत प्रतिनिधि अपने इलाके का विकास करवाने के लिए तत्परता से कार्य करेंगे। ऊना जिले के समूरकला में आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रतिनिधियों से राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर एकजुटता से कार्य करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। सोलन में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने जन प्रतिनिधियों से ईमानदारी से सभी कार्य पूरा करने का आह्वान किया। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कुल्लू में हुए समारोह में पंचायती राज को लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी बताते हुए बिना भेदभाव के जनसेवा के कार्य करने पर बल दिया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने रेकांगपियो में किन्नौर जिले के जन प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। नाहन में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश की सभी पंचायतों को सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा और विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। बिलासपुर में शपथ समारोह के दौरान तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने पंचायत प्रतिनिधियों से जरूरतमंद व पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की अपील की। मंडी में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि 16वें वित्त आयोग के तहत प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के लिए 3,744 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने हमीरपुर में आयोजित समारोह में कहा कि सराहनीय कार्य करने वाले जन प्रतिनिधियों को राज्य सरकार पुरस्कृत करेगी। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलंग में उप मुख्य सचेतक व विधायक केवल सिंह पठानिया ने जन प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद चंबा जिले के दुर्गम क्षेत्र पांगी की फिंडरू पंचायत के उप प्रधान देवी चरण वर्मा ने कहा कि सरकार के सहयोग से पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों को गति दी जाएगी।
5: देवी चरण वर्मा आज उप प्रधान के रूप में शपथ लेने के बाद मैं सबसे पहले ग्राम पंचायत फिंडरू के सम्मानित मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद करता हूं। सरकार के सहयोग से हम अपनी पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करेंगे।
3: इस बीच पांगी घाटी के नव निर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों ने सरकार से पांगी घाटी को अलग विधानसभा क्षेत्र का दर्जा देने की मांग की है। चंबा में आज पत्रकारों से बातचीत में इन प्रतिनिधियों ने कहा कि अलग विधानसभा क्षेत्र बनने से इलाके का समग्र विकास सहित जन समस्याओं का प्रभावी समाधान हो सकेगा। उन्होंने वर्ष भर निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करने के लिए चेहनी पास सुरंग का जल्द निर्माण करने की मांग उठाई। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने तकनीक और विधिक जागरूकता के माध्यम से न्याय को जन जन तक पहुंचाने पर बल दिया है। धर्मशाला में आज भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला न्याय, समानता और विधि के शासन पर आधारित है। हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य में न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि देश के अनेक क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम हैं, जहां नागरिकों तक सेवाएं पहुंचाना चुनौतीपूर्ण है। कार्यशाला में केंद्रीय विधि व संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दुर्गम क्षेत्रों के लोगों तक न्याय सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों तक न्याय पहुंचाने में कॉमन सर्विस सेंटर और टैली लॉ जैसी पहलें अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई हैं। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ऐसी कार्यशालाओं का उद्देश्य पिछले 12 वर्षों में न्यायिक व विधिक क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों से लोगों को अवगत करवाना है। सर्वोच्च न्यायालय ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में महापौर, उपमहापौर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में विधायकों को मतदान करने से रोकने संबंधी प्रदेश उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब विधायक इन चुनावों में मतदान कर सकेंगे। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि वर्तमान केंद्र सरकार के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। नाहन में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है और प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में जनता का अटूट विश्वास बना हुआ है।
6: 2014 से लेकर 2026 तक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने एक लंबी छलांग लगाई है। आज जिस प्रकार से हमारा देश दुनिया के अंदर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आया है, ये तभी संभव हो पाया कि हमारे पास एक बहुत ही मजबूत नेतृत्व है जिसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है और जिनके प्रभाव के कारण आज देश की दिशा और दशा बदलने का काम हुआ।
3: प्रदेश में आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए आज राज्यव्यापी मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। ये मॉक ड्रिल भूकंप, बादल फटने और वनों में आग लगने जैसी आपदाओं से निपटने की तैयारियों को और मजबूत बनाने के लिए करवाई गई। मॉक ड्रिल के दौरान पिछले मॉक अभ्यासों में दिखाई गई प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा भी की गई। इसके अलावा बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों जैसे संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा, निकासी और राहत व्यवस्था को और मजबूत बनाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन से जुड़े कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान भी की गई जिनमें भविष्य में और सुधार की आवश्यकता है। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण कल 16 जून से औपचारिक रूप से शुरू होने जा रहा है। इस चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। ये जनगणना आगामी 15 जुलाई तक संचालित की जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि इस बार की जनगणना डिजिटल माध्यम से की जा रही है, जिसमें प्रगणक HLO मोबाइल ऐप का उपयोग कर रहे हैं। निदेशालय ने सभी नागरिकों से इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में अपना पूरा सहयोग देने का आग्रह किया है। ऊना जिले में प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी मंदिर के विकास और सौंदर्यकरण कार्य पर 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज मंदिर की विकास और विस्तारीकरण परियोजना की तैयारियों का जायजा लेने के बाद बताया कि ये निर्माण कार्य जल्द आरंभ किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य से जुड़ी सभी औपचारिकताएं जल्द पूरा कर तुरंत प्रभाव से कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 11 जिलों में नव निर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों ने ली शपथ। कांगड़ा जिले में 18 जून को होगा समारोह। मुख्यमंत्री ने जन प्रतिनिधियों से ग्राम पंचायतों व समाज को चट्टा मुक्त बनाने का किया आह्वान। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने तकनीक और विधिक जागरूकता के माध्यम से न्याय को जन जन तक पहुंचाने पर दिया बल। आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए आज प्रदेश भर में किया गया मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन। और प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण कल से होगा शुरू। पहले चरण में मकानों की गणना का होगा कार्य। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
0: श्रोता एफ एम 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर। तो श्रोतों अब वक्त हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का, वक्त हो गया आप सभी को टाटा बाय बाय बोलने का। तो जाते जाते यही कहूँगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माँ बाप को खुश रखिए, प्रकृति का खास ख्याल ज़रूर रखिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मुझे यानी सचिन कपूर को दीजिए इजाजत। नमस्ते धर्मशाला।

0: आ चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेना तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास।

0: के, विकास के, जन कल्याण के।
1: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: इतनी गर्मी में फंक्शन कौन रखता है? ऊपर से तुम्हारी साइड से इतने सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, आधे तो ऐसे हैं जिनमें पहली बार मिलने वाली हूँ। मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं उन सबसे कैसे डील करूँगी। लो, ऊपर से ये फाउंडेशन खत्म हो गया, अब मैं अपने मुंह पे क्या लगा के जाऊँ?
6: ताला।
5: क्या?
6: अरे ताला भी खराब हो गया है। काम करते हैं, मार्केट चलते हैं, तुम्हारा मेकअप भी ले लेते हैं और नया ताला भी खरीद लेते हैं।
5: हाँ ठीक है, चलो मार्केट चलते हैं।
6: चलो।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी है। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: इतनी गर्मी में फंक्शन कौन रखता है? ऊपर से तुम्हारी साइड से इतने सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, आधे तो ऐसे हैं जिनमें पहली बार मिलने वाली हूँ। मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन सबसे कैसे डील करूँ। लो, ऊपर से ये फाउंडेशन खत्म हो गया, अब मैं अपने मुंह पे क्या लगा के जाऊँ?
7: ताला।
6: क्या?
7: अरे ताला भी खराब हो गया है। काम करते हैं, मार्केट चलते हैं, तुम्हारा मेकअप भी ले लेते हैं और नया ताला भी खरीद लेते हैं।
6: हाँ ठीक है, चलो मार्केट चलते हैं।
7: चलो।

दोस्तों 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापिस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

तो रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया, अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेना तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी है। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: इतनी गर्मी में फंक्शन कौन रखता है? ऊपर से तुम्हारी साइड से इतने सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, आधे तो ऐसे हैं जिनमें पहली बार मिलने वाली हूँ। मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं उन सबसे कैसे डील करूँ। लो, ऊपर से ये फाउंडेशन खत्म हो गया, अब मैं अपने मुंह पे क्या लगा के जाऊँ?
7: ताला।
6: क्या?
7: अरे ताला भी खराब हो गया है। एक काम करते हैं, मार्केट चलते हैं, तुम्हारा मेकअप भी ले लेते हैं और नया ताला भी खरीद लेते हैं।
6: हाँ ठीक है, चलो मार्केट चलते हैं।
7: चलो।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।